शब्द ज्ञान की सहायता से विकास के शिखर पर तो पहुंच जा सकता है, लेकिन परम लक्ष्य परमानंद को तो ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही पाया जा सकता है।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, घर घर की आवाज, रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

0: पेश है कार्यक्रम घर परिवार एपिसोड 2। आज के हमारे मेहमान है श्रीमती हरजीत कौर लांबा, प्रस्तुतकर्ता आजय किरनी।
1: कार्यक्रम घर परिवार के आज के अंक में मैं किरनी सभी सुनने वालों का स्वागत करती हूं और हरजीत लांबा जी आपका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: सबसे पहले सभी सुनने वाले श्रोता को मेरा सत श्री अकाल, नमस्कार और किरनी जी आपका भी धन्यवाद कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में आमंत्रित किया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप इस कार्यक्रम में आए। नारी ही शक्ति है नर की, नारी ही शोभा है घर की, जो उसे उचित सम्मान मिले तो घर में खुशियों के फूल खिले। एक नारी अकेले ही काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। आप समझ ही गए होंगे कि आज चर्चा का विषय है नारी। अब आपसे मैं पूछना चाहती हूँ हरजीत जी, आप बेटियों यानी नारी की व्याख्या किन शब्दों में करोगे?
2: देखो, जब बेटी का जन्म होता है तो परिवार में बहुत खुशी का माहौल होता है। बेटी के बिना कोई परिवार पूरा नहीं होता। बहुत खुशनसीब हैं वो माता पिता जिनके परिवार में बेटी होती है। आपकी बेटी हमेशा आपकी स्थिति को समझती है। अच्छे बुरे का बेटियां परिवार के लिए उपहार की तरह होती हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा एक बेटी चाहते हैं ताकि उनका परिवार पूरा हो सके। कई लोग बेटी को बोझ समझते हैं लेकिन ये सच नहीं है। बेटियां उनके लिए वरदान होती हैं। यही बेटी नारी की भूमिका निभाती है।
1: जी हाँ, जो बेटी है वो घर को स्वर्ग बनाती है। हर एक चाहता है कि उसकी एक बेटी हो। बेटी समाज का मूल आधार है तथा ईश्वर द्वारा बनाई गई सबसे खूबसूरत और अमूल्य रचना है। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, नारी समाज में अनेक रिश्ते निभाती है, चाहे वो बहन का हो, माँ का हो, पत्नी का हो, दादी का हो, आपका क्या मानना है? कृपया विस्तार में बताइए।
2: परिवार में बेटी और बेटे का समान रूप से महत्व होता है। वर्तमान समाज में भेदभाव को मिटाकर बेटियों को महत्व देना चाहिए। बेटियां ही घर की संचालन शक्ति होती हैं। माँ, बहन एवं पत्नी के रूप में उनका सर्वांग जीवन त्याग एवं सेवा की लंबी गाथा है, उसका बहुत वर्णन है।
1: जी हाँ, एक नारी जो है बहन का, माँ का, पत्नी का, दादी का, सारे रिश्ते बखूबी और बहुत ही खूबसूरती से निभाती है। अब हरजीत जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जो आज की नारी है, नारी का वर्तमान जो स्वरूप है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं?
2: देखो, नारी समाज में भी सबसे आगे आई है। आज बेटियां कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, ऊंचे ऊंचे पदों पर बेटियां विराजमान हैं। पुराने समय में लड़कियां बहुत समझी जाती थी लेकिन आज का युग नारी युग है।
1: जी हाँ, मेरी राय भी यही है। मेरा मानना ये है कि जो वर्तमान की नारी है वो आर्थिक की दृष्टि से आजाद हो, शिक्षित हो, पुरुष की दास्तां से मुक्त हो। दोनों यानी कि एक पुरुष और एक महिला एक दूसरे का सम्मान करते हुए परिवार और समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। हाँ जी,
2: देखो किरनी जी, हमारे समाज में जागरूकता आई है, भ्रूण हत्या अब कम हुई है। गवर्नमेंट ने भी कानून जो है बना दिए हैं, बहुत सख्त कानून बनाए हैं कि बेटियों को जन्म से पहले आप भ्रूण हत्या नहीं कर सकते हैं। और रेशो में भी लड़कियां जो है वो लड़कों के बराबर हो गई है। अभी मैं आपको एक छोटी सी कविता सुनाती हूँ। बेटी बोझ नहीं सम्मान है, घर की प्यारी सी मुस्कान है, आसमान की बुलंदियों को छूने के लिए तैयार है।
1: जी हाँ, इसीलिए हम सबको एक नारी का सम्मान करना चाहिए क्योंकि नारी से ही जीवन है। जी, आपकी कविता से मुझे भी दो लाइनें याद आ गई। मुस्कुराकर दर्द बुलाकर रिश्तों में बंधी थी दुनिया सारी, हर पथ को रोशन करने वाली वो शक्ति है एक नारी। अब हम आपकी पसंद का एक गाना अपने श्रोताओं को सुनाएंगे। आप बताओ आपकी पसंद का गाना कौन सा है?
2: उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार कराते। किरण जी मुझे ये बहुत पसंद
1: है। चलो आपके पसंद का ये गाना हो जाए। जी हाँ, ये गाना बहुत अच्छा है और इसकी जो पहली दो लाइनें हैं जो कश्मीरी में है वो मुझे बहुत पसंद है। जैसे कि बादशाह से खानो मजगूर दुमे रक्सत मैंने बह जानो। अब सब सुनने वालों को और आपको हम ये वाला गाना सुनाते हैं।
2: वाह खूब।

0: बहुत ही मनमोहक गाना था, हमने और लिस्नर्स ने सुना। आप एक हाउसवाइफ भी हैं, आज के मौसम के हिसाब से आप कौन सी रेसिपी श्रोताओं को आज बताने वाले हैं?
1: आज मैं आपको फ्रूट क्रीम बनाना सिखाऊंगी। ठंडा हम खाने को भी मन करता है और पौष्टिक भी है। आजकल किरणी जी बच्चे जो हैं वो फल फ्रूट कुछ चीजें नहीं खाते हैं, इसलिए उनको खिलाना पड़ता है। तो छोटी सी रेसिपी है, उसमें घर में फ्रूट पड़े रहते हैं, जैसे सेब, अनार, केला, कोई भी आप ले सकते हो। उनको छोटे छोटे काट कर बाउल में डाल लो, घर की मलाई पड़ी होती है उसको फेंट लो, अगर नहीं है करीम ले आओ, उसमें शहद मिलाकर उनको मिक्स करके आप बच्चों को खिलाओ, खुद खाओ, ये व्रत में भी खा सकते हो आप।
0: जी हाँ, बहुत ही बढ़िया रेसिपी और कम समय में बनने वाली, मैं भी आज ही ट्राई करूंगी। अब आपकी पसंद का एक और गाना हो जाए।
1: तो क्यों ना वो लगाया जाए, अपने पुराने टाइम का गाना, ओ बाबुल प्यारे।
0: जी हाँ, आपके लिए और अपने श्रोताओं के लिए पेश है बाबुल प्यारे।

0: यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: आप कोई घरेलू नुस्खा बताएं जो सबके लिए कारगर हो।
2: हाँ जी किरणी जी, आजकल बारिश का मौसम है, तो कुछ ऐसा बताया जाए कि स्किन के लिए, खुजली के लिए, जैसे नारियल तेल में थोड़ा सा कपूर मिला के लगाएं कि उससे आपकी स्किन भी ग्लो करेगी और ये आपके लिए फायदेमंद भी होगा।
1: जी हाँ, हमारे श्रोताओं को कुछ तो इससे फायदा मिलेगा। मैं भी एक घरेलू नुस्खा आपके साथ और अपने श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो है हल्दी। हल्दी तो हर एक किचन में मिलती है। अगर शरीर के किसी हिस्से में चोट लगे तो गर्म दूध में हल्की फुल्की हल्दी डालकर पिए। हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ है जो मसल्स में आई सूजन में राहत दिलाती है। हल्दी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट से इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। हमारे ये दोनों घरेलू नुस्खों से शायद हमारे श्रोताओं को कुछ हेल्प मिले।

0: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: प्रोग्राम के अंतिम हिस्से में अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आप आज अंबाला कैंट के पहले FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आए हैं, आप अपने अनुभव हमारे साथ साझा कीजिए।
2: हमें बहुत खुशी है कि अंबाला कैंट को अपना FM स्टेशन मिला है, जिसके माध्यम से हम सभी अंबाला वासी अपनी बात लोगों तक पहुंचाएंगे और पहुंचा सकते हैं। मेरी दिल से दुआ है कि दिन दुगनी रात चुगनी हो। मैं हमेशा FM सुनती रहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अंबाला में मेरे घर के पास FM खुल जाएगा, कि जिसको मैं बड़े मन से सुनती हूँ। अब
1: हरजीत जी, अब हम इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा है। उम्मीद है श्रोताओं को आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपका शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। अब लास्ट में आपकी पसंद का एक और गाना हो जाए।
2: आओ झूमे गाए मिलके धूम मचाए। आपका भी शुक्रिया, आपने मुझे आमंत्रित किया। हमारे श्रोतागण को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।
1: आइए, आपको हरजीत जी के पसंदीदा गाने के साथ छोड़े जा रही हूँ और मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर परिवार एपिसोड 2। इसको प्रस्तुत किया आरजे किरनी ने। रिकॉर्ड एडिट एवं निर्देशन भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता की पेशकश।
1: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

सुनें अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता।

0: वितस्ता रेडियो आपकी जिंदगी की रवानी।
1: ओके मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा।

तस्वीर हटाई होगी, हर तरफ मुझको।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त राहुल अलियान, लेकर आया हूं कहानियों का सिलसिला। आपके लिए जो कहानी लाया हूं, उस कहानी का शीर्षक है परिवार में सहयोग और सम्मान की शक्ति। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत बड़ा परिवार रहता था। परिवार में दादा दादी, माता पिता और उनके बच्चे थे। परिवार के हर सदस्य की अपनी अपनी जिम्मेदारियां थी, लेकिन सभी एक दूसरे का सम्मान करते और एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। गांव के तालाब का पानी सूखने लगा था और गांव के लोग परेशान हो गए थे, क्योंकि यह पानी उनके खेतों के लिए जरूरी था। दादा ने परिवार के सभी सदस्यों को बुलाया और कहा,
1: हम सभी को मिलकर तालाब को फिर से भरने की कोशिश करनी होगी। यदि हम एकजुट होकर काम करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी।
0: सबने मिलकर काम शुरू किया। छोटे बच्चे पानी इकट्ठा कर रहे थे, महिलाएं खाना बना रही थी और पुरुष तालाब की मरम्मत कर रहे थे। परिवार का हर सदस्य अपनी अपनी भूमिका निभा रहा था। काम करते हुए दादा ने कहा,
1: यह काम केवल मेहनत से नहीं होगा, हमें एक दूसरे के साथ प्यार और सम्मान से काम करना होगा, तभी हम सफलता पा सकते हैं।
0: बहुत मेहनत के बाद तालाब फिर से भर गया और गांव के खेतों को पानी मिल गया। सभी लोग खुश थे। परिवार के हर सदस्य को समझ में आ गया कि यदि हम एक दूसरे का सम्मान करें और मिलकर काम करें तो हम किसी भी मुश्किल का हल निकाल सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिवार का प्रेम, सम्मान और सहयोग जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। परिवार में एकता और प्यार से ही हम हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। माता पिता का बलिदान और बच्चों का सम्मान दोनों ही परिवार की नींव होते हैं। यही परिवार के असली मूल्य हैं, जो हमें जीवन में सफलता और खुशी दिलाते हैं।

अगर आपके पास भी कोई मौलिक कहानी है तो आप हमें भेज सकते हैं हमारे मोबाइल नंबर पर 7056413010 पर। अगर हमें वो कहानी अच्छी लगी तो मैं उस कहानी को अपनी आवाज देकर श्रोताओं तक पहुंचाऊंगा। मिलता हूं एक और कहानी के साथ, तब तक आप खुश रहे, खुशहाल रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: स्वस्थ हृदय के लिए एक जन जागरूकता पहल हेल्थ विजन्स एम हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। आप सभी श्रोताओं को हमेशा स्वास्थ्य लाभ मिले इस श्रृंखला में आज वर्ल्ड हार्ट डे पर हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिषेक मित्तल अंबाला से, जो कार्डियोलॉजिस्ट है। वे हमें बताएंगे कि दिल को स्वस्थ कैसे रखा जाए। डॉक्टर मित्तल, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सो मच। थैंक यू, नमस्कार।
0: आपसे जानना चाहेंगे, क्या दिल की बीमारी बिना किसी चेतावनी के लक्षण के हो सकती है?
1: भरत जी, बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल, दिल की बीमारी बिना किसी चेतावनी के या लक्षण के हो सकती है। आजकल जैसे हम लोग देख ही रहे हैं कि जवान लोग सड़क पे चलते हुए अचानक से किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, कोई जिम में एक्सरसाइज कर रहा होता है उसको अचानक से उसकी मृत्यु हो जाती है। इसको हम सडन कार्डिक डेथ बोलते हैं, SCD। आजकल हो ये रहा है कि बेसिकली हम इसमें अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि हमारे हार्ट में दो सिस्टम होते हैं। एक है खून की नलकियों का सिस्टम, जिसमें खून का प्रवाह होता है
0: जी।
1: तो अगर इन नलकियों में ब्लॉकेज आए, उसे बोलते हैं हार्ट अटैक। दूसरा होता है करंट का सिस्टम। हार्ट में इलेक्ट्रिसिटी चलती है, वायरिंग होती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी रुक जाए, वायरिंग एकदम से अचानक से रुक जाए, इसे बोलते हैं कार्डिक अरेस्ट। तो दोनों चीजों में फर्क है। तो आज हमारे पास दो तरीके की बीमारी होती है। एक तो होती है खून की नलकियों की बीमारी, जिसे बोलते हैं हार्ट अटैक, और दूसरी होती है करंट के सिस्टम की बीमारी, जिसमें हो जाते हैं कार्डिक अरेस्ट, अरिथमियाज, मतलब ध्वनि की समस्याएं, रिदम डिस्टर्बेंसेस। आजकल के जमाने में जिस तरीके का स्ट्रेस है लोगों के ऊपर, यंग लोगों के ऊपर, उसमें ये बहुत देखने को मिल रहा है। इसके कुछ हिंट्स मिल जाते हैं हमें। अगर परिवार में बहुत ज्यादा किसी को, परिवार में ऐसा होता है कि माता पिता या भाई बहन या दादा दादी, किसी को अचानक मृत्यु हुई हो किसी के परिवार में, या फिर मरीज कोई अचानक से बेहोश हो गया हो, कुछ सेकंड के लिए, चंद सेकंड के लिए आंखों के सामने अंधेरा आ गया हो, या फिर कुछ नए लक्षण आए जैसे सीने में दर्द, मेहनत करने पे छाती में जकड़न, भारीपन, या बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जीवन में, तब मरीज को इन सब का टेस्ट कराना चाहिए आगे ना। मरीज को अपने परिवार की हिस्ट्री देखनी है। जैसे डॉक्टर के पास जब मरीज आता है, हम उसकी उम्र देखते हैं। कोई भी भारतीय पुरुष 35 या 40 से उम्र ज्यादा, औरत 50 के बाद, जब उनकी मेंसेस रुक जाती है उसके बाद रिस्क बढ़ जाता है। तो इन तीन चीजों को हम बदल नहीं सकते, भारतीय होना, पुरुष होना या औरत होना, और उम्र। जो चीजें बदल सकती है वो होती है शुगर, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, सिगरेट, शराब, बीड़ी, तंबाकू, कोई पुराना हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, किडनी प्रॉब्लम, मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, किसी के भी परिवार में 55 से कम में पुरुष को हार्ट अटैक, 65 से कम में औरत को हार्ट अटैक, मोटापा और बहुत स्ट्रेस। अगर ये सब चीजों में से कुछ भी है तो पेशेंट को अपना टेस्ट कराना चाहिए। या फिर अगर पेशेंट डेली वॉक करने जाता है, चलता फिरता है, और उसको अचानक से लगता है कि आज मैं चल नहीं पा रहा, आज मुझे चलने फिरने में सीने में जकड़न, भारीपन लग रहा है, या जलन लग रहा है जो कभी पहले नहीं हुआ आज तक, और रुकने पे आराम आ रहा है, या सांस फूल रहा है, या थकान हो रही है, या धड़कन तेज हो रही है, ये चार लक्षण, तब मरीज को इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
0: जी डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, दिल से जुड़ा कौन सा लक्षण लोग आमतौर पर नजरअंदाज कर देते हैं?
1: जी, बहुत अच्छा सवाल। बहुत कॉमनली क्या होता है कि लोगों को लगता है एसिडिटी होती है, तो पीपल ऑलवेज थिंक, उनको लगता है कि मुझे एसिडिटी हो रही है, जलन हो रही है, ये एसिड का लक्षण है। आजकल देखा गया है कि एक तो औरतों में, दूसरा डायबिटिक लोगों में छाती में दर्द नहीं होता, छाती में जलन होती है, और थोड़ा छाती भी क्या, छाती से नाभि से ऊपर पेट में जलन होना, एसिडिटी की दवाई के बाद आराम ना मिलना, कई बार दस्त लग जाते, ये लक्षण लोकल डॉक्टर गैस की तरह ट्रीट करते हैं, बट ये एक MI हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं, इनमें एक ECG जरूर होनी चाहिए। तो बाकी थोड़ा बहुत सांस फूलना, धड़कन तेज हो जाना, रोज पेशेंट आधा एक किलोमीटर चलते ही चलते हैं, 15 साल हो गए, 16 साल हो गए, अब अचानक से उसको लगता है कि मैं चल नहीं पा रहा आज, मुझे आज चलने में कुछ हो रहा है, कुछ डिफरेंट है आज, तो उसको इमीडिएटली इवैल्यूएशन की जरूरत है पेशेंट को।
0: आपसे अगला प्रश्न करता हूं, तनाव हमारे दिल को चुपके से किस तरह नुकसान पहुंचाता है?
1: आज के जमाने के हिसाब से ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं इनफैक्ट इस पे बहुत स्ट्रेस देना चाहूंगा। आजकल स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है, जो भी हमारे मन में चिंताएं है उसका बहुत बड़ा रोल है। तो होता ये है कि जब भी हमको स्ट्रेस होता है, भगवान ने हमको इस तरीके से बनाया है कि हमारे हार्ट में दो सिस्टम है। एक होता है सिंपैथेटिक सिस्टम, जैसे कोई ब्लास्ट हो जाए, जी घबरा जाएगा, धड़कन तेज हो जाएगी, और मैं भूखा भासी उस जगह से। ऐसा इसलिए होता है जैसे तेज से धड़के, खून की सप्लाई बढ़ जाए मसल्स तक, और मैं भाग सकूं। अगर किसी मरीज को जीवन में, रोजमर्रा की जिंदगी में स्ट्रेस हो रहा है, पर्सनल लेवल पे स्ट्रेस हो रहा है, किसी के घर में पैसे की प्रॉब्लम है, कोई प्रॉपर्टी का इश्यू है, कोई भी दिक्कत है, इनसे हमारा थोड़ा थोड़ा बीपी पल्स बढ़ते रहता है बार बार, जो हमारे हार्ट को नुकसान करता है, हार्ट में रीमॉडलिंग करता है। सारा खेल हमारी खून की नलकियों का है। खून की नलकियों के अंदर एक चमड़ी होती है जिसे बोलते हैं एंडोथेलियम। एंडोथेलियम अगर हेल्दी नहीं है वो प्रॉब्लम वाली बात है। एंडोथेलियम को नुकसान पहुंचाता है स्ट्रेस। अगर बीपी बढ़ेगा, पल्स बढ़ेगी, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है, पेशेंट स्मोक कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, रात को सो नहीं पा रहा, रात को नींद खुल रही है, तो इस तरीके से हमारे हार्ट का स्टाइल बढ़ जाता है किसी की ब्रेपिटी की वजह से। प्लस हार्ट में अगर माइनर ब्लॉकेज है वो ब्लॉकेज रप्चर कर जाते हैं, इसे बोलते हैं प्लाक रप्चर, जिसे अचानक से हार्ट अटैक हो सकता है। तीसरी चीज, जो हमारी एंडोथीलियम है वो अनहेल्दी हो जाती है, उस कोलेस्ट्रॉल जम जाता है जो नुकसान करता है। चौथी चीज, प्लेटलेट, जो प्लेटें होती है जिसको प्लेटलेट बोलते हैं,
0: जी
1: वो एक्टिवेट हो जाते हैं और खून गाढ़ा हो जाता है इस केस में। जैसे जो जिम जाते हैं ओवर स्ट्रेस कर लेते हैं बॉडी को, मानसिक तनाव, शारीरिक तनाव, अचानक से जो जिम नहीं जाता, दोस्तों को देखे जिम जाना शुरू हुआ और वहां जाके 100-200 किलो उठा लिया, तो ये एकदम से बॉडी पे इतना स्ट्रेस पड़ गया जो जरूरी नहीं था उसको देना, तभी पेशेंट की अचानक मृत्यु हो सकती है।
0: अगर किसी व्यक्ति को दिल में तकलीफ महसूस हो तो सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए?
1: सर, पेशेंट को इमिजिएटली अगर फील हो कि उसको छाती में जकड़न या भारीपन महसूस हो, इसमें हम बहुत स्पेसिफिकली देखते हैं कि पेशेंट को एक पॉइंट पे दर्द नहीं होना चाहिए। कोई पेशेंट बोलता है सर मुझे गहरा सांस लेने में एक पॉइंट पे चुभन हो रही है, ये हार्ट का दर्द नहीं है। अगर पूरी पूरी छाती में डिफ्यूज, छाती में राइट साइड हो या लेफ्ट साइड हो, जो कंधों में जाए, जो जबड़े में जाए, जकड़न, भारीपन, जलन या दर्द और सांस फूलना, घबराहट होना कि जैसे आज कुछ हो जाएगा, इमीडिएटली पेशेंट को हॉस्पिटल जाना चाहिए डॉक्टर के पास। और ज्यादा घबराना नहीं, चिंता नहीं करनी, चिंता उसको मारेगी उस समय,
0: जी
1: उसे आराम से ऑटो के जहाँ पे भी वो है साथ में हेल्प के लिए बुला ले किसी को, और इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंच के उसके वाइटल्स देखने चाहिए, बीपी, पल्स, और एक इमीडिएटली ईसीजी कराना चाहिए जो हमें काफी गाइड कर देता है। बट यही 61 साल के आदमी में हो रही है जिसको शुगर है, बीपी है, जो स्मोक कर रहे हैं, बड़े अंकल है जिनके पिताजी को भी हार्ट अटैक आया था, तब मैं घबराऊंगा, तब पेशेंट को इमीडिएटली भागना चाहिए डॉक्टर के पास, ईसीजी करानी चाहिए उस समय।
0: अब मैं आपसे आखिरी प्रश्न करना चाहूंगा, वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर श्रोताओं के लिए आपका क्या संदेश होगा?
1: जी, मैं श्रोताओं को आपके द्वारा बताना चाहूंगा, मैं कुछ चीजों को ध्यान रखने के लिए बोलूंगा। अगर आप लोगों की उम्र 31-40 साल से ज्यादा है और आप पुरुष है और औरतें 50 के बाद, ऊपर से शुगर, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, सिगरेट, शराब, बीड़ी, तंबाकू, कोई पुराना हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, किडनी प्रॉब्लम, माता पिता, भाई बहन, दादा चाचा, ताऊ के लड़के, कजन में, परिवार में कम उम्र में हार्ट अटैक्स हुए हो, किसी की अचानक मृत्यु हुई हो, आप थोड़े मोटे हैं और आप कम चलते हैं, फिजिकल इनएक्टिविटी और स्ट्रेसफुल लाइफ है बहुत ज्यादा, तो आपको एक बार अपना चेकअप कराना चाहिए। हर 4 से 6 महीने अपना कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर का जांच करना चाहिए। ये 30 साल की उम्र से शुरू हो जाना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात और जो आखिरी बात मैं बताऊंगा, कुछ चीजें भगवान पे छोड़नी है, हमारे हाथों में सब कुछ नहीं है। आजकल दुनिया परेशान, सब लोग बहुत परेशान है, और शांति रखिए जीवन में और खुश रहिए अपने परिवार में, मतलब है ना
0: जी। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप रेडियो विदस्ता के साथ जुड़े और आपने हमारी श्रोताओं के लिए वर्ल्ड हार्ट डे पर ये सारी जानकारी दे दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू, नमस्कार।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो हम सफर भारत सोपोरी, लेके आया हूं आपके लिए आज एक और कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है भिखारी का दान, जिसको लिखा है सीहोर मध्य प्रदेश से धर्मराज देशराज जी ने। वर्मा जी सुबह सुबह घूमने के लिए अपने बंगले के बाहर निकले ही थे कि उनके दरवाजे के पास आकर एक लंगड़ा भिखारी गाने लगा, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है। फिर उस लंगड़े भिखारी ने जोर से आवाज लगाई, सोने वालों जागो, घूमने जाओ, पढ़ाई करो, समय नष्ट मत करो, उठो जागो, समय बहुत कीमती है। ये सुनकर वर्मा जी ने उससे 10 का नोट दिया और पूछा, बाबा इस कॉलोनी में पहली बार आए हो, कहां के रहने वाले हो। तब भिखारी बोला, सर जी इसी शहर का निवासी हूं, बस रोज कॉलोनी बदल बदल कर सुबह जल्द उठने का संदेश देता हूं। लोग भिखारी समझकर रुपया पैसा दे देते हैं तो लेकर रख लेता हूं और धर्म कार्य में लगा देता हूं। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया और वर्मा जी घूमने के लिए निकल गए। 2-3 दिन बाद सुबह सुबह जब वर्मा जी घूमने के लिए निकल ही रहे थे, उनकी ससुराल से कॉल आ गया। जब बातचीत खत्म हुई तब वो अपनी पत्नी से बोले, मैडम आपकी माताजी का संदेश था, आपके पिताजी अचानक बहुत बीमार हो गए हैं, हमें इसी समय बुलाया है। ये सुनते ही उनकी पत्नी उठ खड़ी हुई। वर्मा जी ने अपना स्कूटर निकाला और 15-20 मिनट में ही वहां पहुंच गए। वर्मा जी ने अपनी ससुराल के दरवाजे पर पहुंचकर देखा, वही लंगड़ा भिखारी उस कॉलोनी में लोगों को जगा रहा है, जोर जोर से गीत गाकर जगाने की प्रेरणा दे रहा है। फिर वर्मा जी ने अपने ससुर का हाल जाना, तत्काल किसी नजदीकी नर्सिंग होम ले चलने का तय हुआ। 2-3 दिन बाद वर्मा जी दिल लगाकर प्राइवेट नर्सिंग होम में अपने ससुर की देखरेख में लगे रहे। एक दिन नर्सिंग होम के दरवाजे पर किसी महिला के जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दी। वर्मा जी ने जाकर वहां तमाशाई एक व्यक्ति से पूछा, भाई क्या बात है। तब उसने कहा, इस महिला का कोई नजदीकी यहां मर गया है, लेकिन उसके मृत शरीर को नर्सिंग होम वाले दे नहीं रहे हैं, कहते हैं पहले यहाँ का बकाया रुपया जमा करो। तब वर्मा जी ने अपना रुमाल उस महिला के पास बिछा दिया और उस पर कुछ रुपए रख दिए। उनका अनुसरण करते हुए 2-3 लोगों ने भी रुपया वहां रख दिए। तभी वहां एक सूट बूट पहने एक व्यक्ति ने आकर आवाज लगाई, यहाँ का इंचार्ज कौन है, कितने रुपए बाकी हैं इन पर, जरा भी इंसानियत नहीं है। तब एक व्यक्ति ने आकर कहा, साहब जी कैश का इंचार्ज मैं हूँ, छोटा सा कर्मचारी हूँ यहाँ का, मुझे भी हिसाब देना होता है, इन पर पूरे 5,000 रुपए बाकी है। तब आए हुए व्यक्ति ने अपनी जेब से निकालकर 5,000 रुपए दिए और कहा, ये लो तुम्हारे रुपए और सुनो ऐसे किसी भी मजबूर को परेशान मत करना, जब भी ऐसी स्थिति आए मुझे बुलाकर रुपया ले लिया करो। फिर उस रोने वाली महिला के कुछ रुपये देकर वो जैसे ही आगे बढ़ा, वर्मा जी हाथ पकड़कर एक तरफ ले जाकर कहा, भाई आपको मैंने कहीं देखा है, क्या मुझे जानते हो। तब वो व्यक्ति बोला, जी मैं वही भिखारी हूँ जो रोज गली गली घूम कर जल्दी जागने और समय के सदउपयोग का संदेश देता हूँ। ये सुनकर वर्मा जी चौंक पड़े और बोले, लेकिन वो भिखारी तो लंगड़ा था। तब उस व्यक्ति ने अपने पैर में लगे नकली पैर को दिखाकर कहा, सर जी मुझे शुगर की बीमारी हो गई थी जिसकी मैंने उचित देखभाल नहीं की, अपनी लापरवाही के कारण मुझे अपने पैर के कुछ हिस्से को निकलवाना पड़ा, सर जी मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, अतः मैंने अपने जीवन को उद्देश्य पूर्ण बनाने के लिए रोज सुबह मांगता हूँ
अपनी जरूरत पूरी होने के बाद जो बचता है उसे धर्म के काम में लगा देता हूँ। अपने देश में बहुत से धनवान ऐसे हैं जिनके पास करोड़ों रुपए फालतू पड़े हैं, लेकिन किसी गरीब की मदद करने को पाप समझते हैं। ये सुनकर वर्मा जी बोले, भाई आपके विचार जानकर बहुत प्रभावित हुआ हूँ और आपको नमन करता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, इस कहानी का सार ये है कि आपके पास जितनी भी क्षमता है जरूरतमंद की मदद जरूर करें, जितना भी आप कर सकते हैं। और इसी सुविचार के साथ मैं आप सभी से लेता हूँ विदा। किसी और कहानी के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

ये सफर है फिल्मी गीतों का, तय करेंगे आप अपने रेडियो दोस्त रमेश मराठा के साथ। नमस्कार, आदाब। सहर होते ही कोई हो गया रुखसत गले मिलकर, फसाने रात के कहती रही टूटी हुई चुप।

दर्द जगता है अक्सर दिल के इस नाजुक कोने में, जहां कभी प्यार पलता था सिर्फ तुम्हारे लिए। जहां से तुम्हारा गुजर हुआ, वहां के रास्तों को तुमने महकाया, वहां की वीरानी को गुलजार किया, और वहां के फासलों को तुम्ही ने मिटाया। तुम्ही ने दर्द दिया और तुम्ही ने दवा। अब यहां हमारे तन्हाइयां पलती हैं, थाम लेती हैं रुसवाइयां दामन, और तुम्हारी याद में ये आंखें अश्कबार रहती हैं। जगता है दर्द अक्सर इस दिल के कोने में।

फिर बरसता, भीग जाती ये खामोश चिनार, शायद बोल भी पड़ते, मुस्कुराते भी, और अपनी चुप्पी तोड़ लेते। मैं इनसे लिपटता, अब की बार इनके सायों में उम्र गुजारता, शायद गुजरे वो पल याद आते जो कभी भुलाए नहीं जाते। क्यों न बिस्तर की सिलवटों को ख्वाबों का पोशाक पहनाए, शायद फिर ये बादल टुकड़े टुकड़े हो जाए।

क्यों लगता है बरसों से शनासाई है, ये मखमली मौसम बेताब है तुम्हारे पैरों की चुभन के लिए। बदलते रुत सरगोशियां करती हवाएं, तुम्हारे दुपट्टे की खुशबू अब एहसास है मेरा। क्या तुम्हें याद है तपती दोपहरी के दामन में, यहां की फिजाओं को इन पानियों में हम बहाया करते थे, इन सूफियाना धुनों में आवाज से आवाज मिलाना, यही हमारी

ये मौसम है तुम्हारी यादों का, सावन का ही महीना था जब तुम लौट आए थे नंगे पांव, भीग चुके थे तुम्हारे कप कपाते होंठ, चेहरे की रौनक और सादगी से भरा कदे आदम जिस्म, धड़कने उदासी में लिपटी हुई थी, शायद अपना दर्द बयां कर रही थी।

मेरी पनाहगाहों में जो तुम ठहरते ता उम्र, शायद तुम्हारी यादों का मौसम खिल उठता मौसमी बहार की तरह।

जिक्र तेरा ही होता है। इन पानियों में लहरें उठती तो हैं पर अक्स बिखरती नहीं, ये साहिल रहते हैं बेताब इन पानियों को छूने के लिए। यहां शाम होते होते मुरझा गए अब ये भीगे मौसम और छिप गए चुप हो गए बुलबुल। इन काली खामोश घटाओं ने घेरा है सितारों को चांद को मेरी परछाई को और तुम्हारी मुस्कान को।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा गीत।
1: स्वस्थ हृदय के लिए एक जन जागरूकता पहल, हेल्थ विजन्स एम हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। आप सभी श्रोताओं को हमेशा स्वास्थ्य लाभ मिले इस श्रृंखला में आज वर्ल्ड हार्ट डे पर हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिषेक मित्तल अंबाला से, जो कार्डियोलॉजिस्ट है। वे हमें बताएंगे कि दिल को स्वस्थ कैसे रखा जाए। डॉक्टर मित्तल, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू सो मच। थैंक यू, नमस्कार।
1: आपसे जानना चाहेंगे, क्या दिल की बीमारी बिना किसी चेतावनी के लक्षण के हो सकती है?
2: भरत जी, बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल, दिल की बीमारी बिना किसी चेतावनी के या लक्षण के हो सकती है। आजकल जैसे हम लोग देख ही रहे हैं कि जवान लोग सड़क पे चलते हुए अचानक से किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, कोई जिम में एक्सरसाइज कर रहा होता है उसको अचानक से उसकी मृत्यु हो जाती है। इसको हम सडन कार्डियक डेथ बोलते हैं, SCD। आजकल हो ये रहा है कि बेसिकली हम इसमें अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि हमारे हार्ट में दो सिस्टम होते हैं। एक है खून की नलकियों का सिस्टम, जिसमें खून का प्रवाह होता है
1: जी।
2: तो अगर इन नलकियों में ब्लॉकेज आए उसे बोलते हैं हार्ट अटैक। दूसरा होता है करंट का सिस्टम। हार्ट में इलेक्ट्रिसिटी चलती है, वायरिंग होती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी रुक जाए, वायरिंग एकदम से अचानक से रुक जाए, इसे बोलते हैं कार्डिक अरेस्ट। तो दोनों चीजों में फर्क है। तो आज हमारे पास दो तरीके की बीमारी होती है। एक तो होती है खून की नलकियों की बीमारी, जिसे बोलते हैं हार्ट अटैक, और दूसरी होती है करंट के सिस्टम की बीमारी, जिसमें हो जाते हैं कार्डियक अरेस्ट, अरिथमियाज, मतलब ध्वनि की समस्या है, रिदम डिस्टर्बेंसेस। आजकल के जमाने में जिस तरीके का स्ट्रेस है लोगों के ऊपर, यंग लोगों के ऊपर, उसमें ये बहुत देखने को मिल रहा है। इसके कुछ हिंट्स मिल जाते हैं हमें। अगर परिवार में बहुत ज्यादा किसी को, परिवार में ऐसा होता है कि माता पिता या भाई बहन या दादा दादी, किसी को अचानक मृत्यु हुई हो किसी के परिवार में, या फिर मरीज कोई अचानक से बेहोश हो गया हो कुछ सेकंड के लिए, चंद सेकंड के लिए आंखों के सामने अंधेरा आ गया हो, या फिर कुछ नए लक्षण आए जैसे सीने में दर्द, मेहनत करने पे छाती में जकड़न, भारीपन, या बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जीवन में, तब मरीज को इन सब का टेस्ट कराना चाहिए। आगे ना मरीज को अपने परिवार की हिस्ट्री देखनी है। जैसे डॉक्टर के पास जब मरीज आता है, हम उसकी उम्र देखते हैं। कोई भी भारतीय पुरुष 35 या 40 से उम्र ज्यादा, औरत 50 के बाद जब उनकी मेंसेस रुक जाती है उसके बाद रिस्क बढ़ जाता है। तो इन तीन चीजों को हम बदल नहीं सकते, भारतीय होना, पुरुष होना या औरत होना, और उम्र। जो चीजें बदल सकती है वो होती है शुगर, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, सिगरेट, शराब, बीड़ी, तंबाकू, कोई पुराना हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, किडनी प्रॉब्लम, मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, किसी के भी परिवार में 55 से कम में पुरुष को हार्ट अटैक, 65 से कम में औरत को हार्ट अटैक, मोटापा और बहुत स्ट्रेस, अगर ये सब चीजों में से कुछ भी है तो पेशेंट को अपना टेस्ट कराना चाहिए। या फिर अगर पेशेंट डेली वॉक करने जाता है, चलता फिरता है, और उसको अचानक से लगता है कि आज मैं चल नहीं पा रहा, आज मुझे चलने फिरने में सीने में जकड़न, भारीपन लग रहा है, या जलन लग रहा है जो कभी पहले नहीं हुआ आज तक, और रुकने पे आराम आ रहा है, या सांस फूल रहा है, या थकान हो रही है, या धड़कन तेज हो रही है, ये चार लक्षण, तब मरीज को इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, दिल से जुड़ा कौन सा लक्षण लोग आमतौर पर नजरअंदाज कर देते हैं?
2: जी, बहुत अच्छा सवाल। बहुत कॉमनली क्या होता है कि लोगों को लगता है एसिडिटी होती है, तो पीपल ऑलवेज थिंक, उनको लगता है कि मुझे एसिडिटी हो रही है, जलन हो रही है, ये एसिड का लक्षण है। आजकल देखा गया है कि एक तो औरतों में, दूसरा डायबिटिक लोगों में छाती में दर्द नहीं होता, छाती में जलन होती है, और थोड़ा छाती भी क्या, छाती से नाभि से ऊपर पेट में जलन होना, एसिडिटी की दवाई के बाद आराम ना मिलना, कई बार दस्त लग जाते, ये लक्षण लोकल डॉक्टर गैस की तरह ट्रीट करते हैं, बट ये एक MI हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं, इनमें एक ECG जरूर होनी चाहिए। तो बाकी थोड़ा बहुत सांस फूलना, धड़कन तेज हो जाना, रोज पेशेंट आधा एक किलोमीटर चलते ही चलता है, 15 साल हो गए, 16 साल हो गए, अब अचानक से उसको लगता है कि मैं चल नहीं पा रहा आज, मुझे आज चलने में कुछ हो रहा है, कुछ डिफरेंट है आज, तो उसको इमीडिएटली इवैल्यूएशन की जरूरत है पेशेंट को।
1: आपसे अगला प्रश्न करता हूं, तनाव हमारे दिल को चुपके से किस तरह नुकसान पहुंचाता है?
2: आज के जमाने के हिसाब से ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं इनफैक्ट इस पे बहुत स्ट्रेस देना चाहूंगा। आजकल स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है, जो भी हमारे मन में चिंता है उसका बहुत बड़ा रोल है। तो होता ये है कि जब भी हमको स्ट्रेस होता है, भगवान ने हमको इस तरीके से बनाया है कि हमारे हार्ट में दो सिस्टम है। एक होता है सिंपैथेटिक सिस्टम, जैसे कोई ब्लास्ट हो जाए, जी घबरा जाएगा, धड़कन तेज हो जाएगी, और मैं भूखा भासी उस जगह से। ऐसा इसलिए होता है जैसे तेज तेज धड़के खून की सप्लाई बढ़ जाए मसल्स तक और मैं भाग सकूं। अगर किसी मरीज को जीवन में रोजमर्रा की जिंदगी में स्ट्रेस हो रहा है, पर्सनल लेवल पे स्ट्रेस हो रहा है, किसी के घर में पैसे की प्रॉब्लम है, कोई प्रॉपर्टी का इश्यू है, कोई भी दिक्कत है, इनसे हमारा थोड़ा थोड़ा बीपी पल्स बढ़ते रहता है बार बार, जो हमारे हार्ट को नुकसान करता है, हार्ट में रीमॉडलिंग करता है। सारा खेल हमारी खून की नलकियों का है। खून की नलकियों के अंदर एक चमड़ी होती है जिसे बोलते हैं एंडोथेलियम। एंडोथेलियम अगर हेल्दी नहीं है तो प्रॉब्लम वाली बात है। एंडोथेलियम को नुकसान पहुंचाता है स्ट्रेस। अगर बीपी बढ़ेगा, पल्स बढ़ेगी, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है, पेशेंट स्मोक कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, रात को सो नहीं पा रहा, रात को नींद खुल रही है, तो इस तरीके से हमारे हार्ट का स्टाइल पड़ जाता है किसी की ड्रिपिटी की वजह से। प्लस हार्ट में अगर माइनर ब्लॉकेज है वो ब्लॉकेज रप्चर कर जाते हैं, इसे बोलते हैं प्लाक रप्चर, जिसे अचानक से हार्ट अटैक हो सकता है। तीसरी चीज, जो हमारी एंडोथीलियम है वो अनहेल्दी हो जाती है, उस कोलेस्ट्रॉल जम जाता है जो नुकसान करता है। चौथी चीज, प्लेटलेट, जो प्लेटें होती है जिसको प्लेटलेट्स बोलते हैं, वो एक्टिवेट हो जाती है और खून गाढ़ा हो जाता है इस केस में। जैसे जो जिम जाते हैं ओवर स्ट्रेस कर लेते हैं बॉडी को, मानसिक तनाव, शारीरिक तनाव, अचानक से जो जिम नहीं जाता, दोस्तों को देखे जिम जाना शुरू हुआ और वहां जाके 100-200 किलो उठा लिया, तो ये एकदम से बॉडी पे इतना स्ट्रेस पड़ गया जो जरूरी नहीं था उसको देना, तभी पेशेंट की अचानक मृत्यु हो सकती है।
1: अगर किसी व्यक्ति को दिल में तकलीफ महसूस हो तो सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए?
2: सर, पेशेंट को इमिजिएटली अगर फील हो कि उसको छाती में जकड़न या भारीपन महसूस हो, इसमें हम बहुत स्पेसिफिकली देखते हैं कि पेशेंट को एक पॉइंट पे दर्द नहीं होना चाहिए। कोई पेशेंट बोलता है सर मुझे गहरा सांस लेने में एक पॉइंट पे चुभन हो रही है, ये हार्ट का दर्द नहीं है। अगर पूरी पूरी छाती में डिफ्यूज, छाती में राइट साइड हो या लेफ्ट साइड हो, जो कंधों में जाए, जो जबड़े में जाए, जकड़न, भारीपन, जलन या दर्द और सांस फूलना, घबराहट होना कि जैसे आज कुछ हो जाएगा, इमीडिएटली पेशेंट को हॉस्पिटल जाना चाहिए डॉक्टर के पास। और ज्यादा घबराना नहीं, चिंता नहीं करनी, चिंता उसको मारेगी उस समय
1: जी।
2: उसे आराम से ऑटो के जहाँ पे भी वो है साथ में हेल्प के लिए बुला ले किसी को, और इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंच के उसके वाइटल देखने चाहिए, बीपी, पल्स, और एक इमीडिएटली ईसीजी कराना चाहिए जो हमें काफी गाइड कर देता है। बट ये 61 साल के आदमी में हो रही, जिसको शुगर है, बीपी है, जो स्मोक कर रहे हैं, बड़े अंकल है जिनके पिताजी को भी हार्ट अटैक आया था, तब मैं घबराऊंगा, तब पेशेंट को इमीडिएटली भागना चाहिए डॉक्टर के पास, ईसीजी करानी चाहिए उस समय।
1: अब मैं आपसे आखिरी प्रश्न करना चाहूंगा, वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर श्रोताओं के लिए आपका क्या संदेश होगा?
2: जी, मैं श्रोताओं को आपके द्वारा बताना चाहूंगा, मैं कुछ चीजों का ध्यान रखने के लिए बोलूंगा। अगर आप लोगों की उम्र 31-40 साल से ज्यादा है और आप पुरुष है और औरतें 50 के बाद, ऊपर से शुगर, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, सिगरेट, शराब, बीड़ी, तंबाकू, कोई पुराना हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, किडनी प्रॉब्लम, माता पिता, भाई बहन, दादा चाचा, ताऊ के लड़के, कजन्स में, परिवार में कम उम्र में हार्ट अटैक्स हुए हो, किसी की अचानक मृत्यु हुई हो, आप थोड़े मोटे हैं और आप कम चलते हैं, फिजिकल इनएक्टिविटी और स्ट्रेसफुल लाइफ है बहुत ज्यादा, तो आपको एक बार अपना चेकअप कराना चाहिए। हर 4 से 6 महीने अपना कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर का जांच करना चाहिए। ये 30 साल की उम्र से शुरू हो जाना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात और जो आखिरी बात मैं बताऊंगा, कुछ चीजें भगवान पे छोड़नी है, हमारे हाथों में सब कुछ नहीं है। आजकल दुनिया परेशान, सब लोग बहुत परेशान है, और शांति रखिए जीवन में और खुश रहिए अपने परिवार में, मतलब है ना
1: जी। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप रेडियो विदस्ता के साथ जुड़े और आपने हमारी श्रोताओं के लिए वर्ल्ड हार्ट डे पर ये सारी जानकारी दे दी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: थैंक यू सो मच, थैंक यू, नमस्कार।

0: पेश है कार्यक्रम फिल्मी किस्से एपिसोड 3, प्रस्तुत करेंगे दीपक कश्यप।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो, और आपका स्वागत करता हूं कार्यक्रम फिल्मी किस्से एपिसोड 3 में दीपक कश्यप के साथ। मैं एक बार फिर हाजिर हूं हिंदी सिनेमा के 70 के दशक की एक ऐसी फिल्म की कहानी, किस्से और गीत लेकर जो आज भी लोगों के जहन में बसी हुई है। और कमाल की बात तो ये है कि यह फिल्म उस समय में 1 करोड़ के बजट में बनी थी और दुनिया भर में सुपरहिट रही 7.2 करोड़ की कमाई के साथ। और वह फिल्म थी उस समय की बेस्ट कॉमेडी मूवी, मेरा मतलब है बेस्ट हिट और एवरग्रीन कॉमेडी मूवी गोलमाल, जिसे डायरेक्ट किया ऋषिकेश मुखर्जी ने, जिसने उन्हें मास्टर ऑफ कॉमेडी बना दिया। हालांकि तब तक उनकी अधिकांश फिल्में गंभीर और गहन थी। यह मूवी केवल 40 दिन में बनकर तैयार हो गई थी। और इस मूवी का सेट कहां लगा था यह भी आपको मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले शो की शुरुआत कर लेते हैं इस मूवी के टाइटल ट्रैक के साथ।

तो हम बात कर रहे थे इस फिल्म की शूटिंग के सेट की। गोलमाल फिल्म ऋषिकेश मुखर्जी ने बांद्रा इलाके में मौजूद अपने ही बंगले में शूट कर ली थी। भवानी प्रसाद का घर, भवानी प्रसाद का ऑफिस और ये सब जगह ऋषिकेश मुखर्जी के बंगले के अंदर ही फिल्माए गए थे। फिल्म के हीरो राम प्रसाद शर्मा के घर का दृश्य जो आपने फिल्म में देखा होगा, वो भी ऋषिकेश मुखर्जी के बंगले का ही एक हिस्सा है। डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी के घर अनुपमा के आसपास फिल्म की शूटिंग हुई थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान डायरेक्टर के हॉल को भवानी फार्म बनाया गया था और उनके ड्राइंग रूम को राम प्रसाद का घर और उनके गार्डन को पार्टी सीक्वेंस के लिए शूट किया गया था। साथ ही आज के समय की फिल्मों में बड़े बड़े कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स को हायर किया जाता है। वहीं गोलमाल फिल्म की शूटिंग के दौरान फिल्म एक्टर्स ने अपने असली कपड़ों में ही शूटिंग की थी। इतना ही नहीं, देवेन वर्मा को अपनी ही कार से फिल्म में एंट्री लेनी पड़ी थी। अभी आपको छोड़ देते हैं एक गीत के साथ, लौट कर आपको बताएंगे किस तरह ऋषिकेश मुखर्जी इस फिल्म को बनाने के लिए कौन सी फिल्म से प्रेरित हुए थे।

ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म गोलमाल एक बंगाली फिल्म कांचा मिठा से प्रेरित थी। जब डायरेक्टर ने इस फिल्म को देखा तो उसके बाद उनके मन में ख्याल आया गोलमाल फिल्म बनाने का। कांचा मिठा फिल्म में मेन किरदार अपनी गलतियां छुपाने के लिए कई तरह के झूठ बोलता है और आखिर में खुद फंस जाता है। क्या आपको पता है इस फिल्म का एक सीन अमिताभ बच्चन जी की एक फिल्म से लिया गया था। गोलमाल फिल्म में एक सीन ऋषिकेश मुखर्जी ने अपनी ही फिल्म जुर्माना का डाला है, जिसमें अमिताभ बच्चन जी एक लड़की से फ्लर्ट करते हैं। लेकिन गोलमाल फिल्म में इस सीन में अमोल पालेकर थे। इस फिल्म को 5 भाषाओं में बनाया गया था। 1989 में गोलमाल के हिंदी में रिलीज होने के कुछ समय के अंतराल पर यह फिल्म तमिल में थिल्लू मिल्लू के नाम से बनी, फिर सिन्हाला भाषा में भी बनी, कन्नड़ में भी और 1995 में मलयालम में भी इसका वर्जन बनाया गया था। अब बारी है इस फिल्म के एक और गीत की।

0: सम कहां तुम कहां हम कहां ताल कहां सम कहां तुम कहां हम कहां तेरे कर तुम ना लगड़ तुम तेरे कर तुम ना लगड़ तुम हम तुम नता हाथ की पाता लता हाथ पता पा मेरा कच करामत
1: ताते छेता ताते देता ताते छेता ताते देता थैया थैया

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो दस्ता, हम सफर जिंदगी का फिल्मी किस्से एपिसोड 3। अब वक्त है एक आखिरी किस्से का। अभी तक हम बात कर चुके हैं किस तरीके से यह फिल्म शूट की गई, कैसे इस फिल्म के कपड़े डिजाइन हुए और कैसे ये बंगाली फिल्म से प्रेरित रही और आगे जाकर 5 भाषाओं में भी बनी। और अब बात करते हैं इस फिल्म के कलाकारों की जिन्होंने इस फिल्म की कहानी में जान फूंक दी। सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म की अभिनेत्री बिंदिया गोस्वामी जी की। कहा जाता है कि इस फिल्म को बनाते वक्त ऋषिकेश मुखर्जी की पहली पसंद वह नहीं थी, उनके स्थान पर वे रेखा जी को चाहते थे, लेकिन उस वक्त वो बहुत बड़ी अभिनेत्री थी और उस समय में वह अपने करियर में एक ऊंचे मुकाम तक पहुंच चुकी थी और यह फिल्म मेल सेंट्रिक थी और उनके होने से बाकी के किरदारों का प्रभाव घट सकता था, जिस वजह से उन्होंने बिंदिया गोस्वामी को चुना। अब बात करते हैं इस फिल्म के मेन लीड की, जो थे कॉमन मैन हीरो अमोल पालेकर जी और उत्पल दत्त जी। फिल्म में उत्पल दत्त जी भवानी शंकर का किरदार निभाया था और पहली बार उन्होंने किसी कॉमेडी फिल्म में काम किया था। इस फिल्म के लिए उन्हें पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। साथ ही अमोल पालेकर जी को बेस्ट एक्टर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये थे आज की फिल्म के किस्से। और अगर इस फिल्म के किस्से और गाने दोनों पसंद आए हो तो यह फिल्म भी जरूर देखिएगा। अब मुझे दीजिए इजाजत, मैं आपका रेडियो दोस्त दीपक कश्यप, आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई फिल्म और उसके किस्सों के साथ। तब तक के लिए सुनते रहें FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्मी किस्से एपिसोड 3, लेखक एडिटर व प्रस्तुतकर्ता दीपक कश्यप, निर्देशन सेजल पुंज। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता की पेशकश।

0: अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: स्वस्थ हृदय के लिए एक जन जागरूकता पहल, हेल्थ विजन्स एम हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। आप सभी श्रोताओं को हमेशा स्वास्थ्य लाभ मिले इस श्रृंखला में आज वर्ल्ड हार्ट डे पर हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिषेक मित्तल अंबाला से, जो कार्डियोलॉजिस्ट है। वे हमें बताएंगे कि दिल को स्वस्थ कैसे रखा जाए। डॉक्टर मित्तल, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार।
1: आपसे जानना चाहेंगे, क्या दिल की बीमारी बिना किसी चेतावनी के लक्षण के हो सकती है?
2: भरत जी, बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल, दिल की बीमारी बिना किसी चेतावनी के या लक्षण के हो सकती है। आजकल जैसे हम लोग देख ही रहे हैं कि जवान लोग सड़क पे चलते हुए अचानक से किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, कोई जिम में एक्सरसाइज कर रहा होता है उसको अचानक से उसकी मृत्यु हो जाती है। इसको हम सडन कार्डियक डेथ बोलते हैं, SCD। आजकल हो ये रहा है कि बेसिकली हम इसमें अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि हमारे हार्ट में दो सिस्टम होते हैं। एक है खून की नलकियों का सिस्टम, जिसमें खून का प्रवाह होता है
1: जी।
2: तो अगर इन नलकियों में ब्लॉकेज आए उसे बोलते हैं हार्ट अटैक। दूसरा होता है करंट का सिस्टम। हार्ट में इलेक्ट्रिसिटी चलती है, वायरिंग होती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी रुक जाए, वायरिंग एकदम से अचानक से रुक जाए, इसे बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। तो दोनों चीजों में फर्क है। तो आज हमारे पास दो तरीके की बीमारी होती है। एक तो होती है खून की नलकियों की बीमारी, जिसे बोलते हैं हार्ट अटैक, और दूसरी होती है करंट के सिस्टम की बीमारी, जिसमें हो जाते हैं कार्डियक अरेस्ट, अरिथमियाज, मतलब ध्वनि की समस्या है, रिदम डिस्टर्बेंसेस। आजकल के जमाने में जिस तरीके का स्ट्रेस है लोगों के ऊपर, यंग लोगों के ऊपर, उसमें ये बहुत देखने को मिल रहा है। इसके कुछ हिंट्स मिल जाते हैं हमें। अगर परिवार में बहुत ज्यादा किसी को, परिवार में ऐसा होता है कि माता पिता या भाई बहन या दादा दादी, किसी को अचानक मृत्यु हुई हो किसी के परिवार में, या फिर मरीज कोई अचानक से बेहोश हो गया हो कुछ सेकंड के लिए, चंद सेकंड के लिए आंखों के सामने अंधेरा आ गया हो, या फिर कुछ नए लक्षण आए जैसे सीने में दर्द, मेहनत करने पे छाती में जकड़न, भारीपन, या बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जीवन में, तब मरीज को इन सब का टेस्ट कराना चाहिए आगे ना। मरीज को अपने परिवार की हिस्ट्री देखनी है। जैसे डॉक्टर के पास जब मरीज आता है, हम उसकी उम्र देखते हैं। कोई भी भारतीय पुरुष 35 या 40 से उम्र ज्यादा, औरत 50 के बाद जब उनकी मेंसेस रुक जाती है उसके बाद रिस्क बढ़ जाता है। तो इन तीन चीजों को हम बदल नहीं सकते, भारतीय होना, पुरुष होना या औरत होना, और उम्र। जो चीजें बदल सकती है वो होती है शुगर, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, सिगरेट, शराब, बीड़ी, तंबाकू, कोई पुराना हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, किडनी प्रॉब्लम, मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, किसी के भी परिवार में 55 से कम में पुरुष को हार्ट अटैक, 65 से कम में औरत को हार्ट अटैक, मोटापा और बहुत स्ट्रेस, अगर ये सब चीजों में से कुछ भी है तो पेशेंट को अपना टेस्ट कराना चाहिए। या फिर अगर पेशेंट डेली वॉक करने जाता है, चलता फिरता है, और उसको अचानक से लगता है कि आज मैं चल नहीं पा रहा, आज मुझे चलने फिरने में सीने में जकड़न, भारीपन लग रहा है या जलन लग रहा है जो कभी पहले नहीं हुआ आज तक, और रुकने पे आराम आ रहा है, या सांस फूल रहा है, या थकान हो रही है, या धड़कन तेज हो रही है, ये चार लक्षण, तब मरीज को इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, दिल से जुड़ा कौन सा लक्षण लोग आमतौर पर नजरअंदाज कर देते हैं?
2: जी, बहुत अच्छा सवाल। बहुत कॉमनली क्या होता है कि लोगों को लगता है एसिडिटी होती है, तो पीपल ऑलवेज थिंक, उनको लगता है कि मुझे एसिडिटी हो रही है, जलन हो रही है, ये एसिड का लक्षण है। आजकल देखा गया है कि एक तो औरतों में, दूसरा डायबिटिक लोगों में छाती में दर्द नहीं होता, छाती में जलन होती है, और थोड़ा छाती भी क्या, छाती से नाभि से ऊपर पेट में जलन होना, एसिडिटी की दवाई के बाद आराम ना मिलना, कई बार दस्त लग जाते, ये लक्षण लोकल डॉक्टर गैस की तरह ट्रीट करते हैं, बट ये एक MI हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं, इनमें एक ECG जरूर होनी चाहिए। तो बाकी थोड़ा बहुत सांस फूलना, धड़कन तेज हो जाना, रोज पेशेंट आधा एक किलोमीटर चलते ही चलता है, 15 साल हो गए, 16 साल हो गए, अब अचानक से उसको लगता है कि मैं चल नहीं पा रहा आज, मुझे आज चलने में कुछ हो रहा है, कुछ डिफरेंट है आज, तो उसको इमीडिएटली इवैल्यूएशन की जरूरत है पेशेंट को।
1: आपसे अगला प्रश्न करता हूं, तनाव हमारे दिल को चुपके से किस तरह नुकसान पहुंचाता है?
2: आज के जमाने के हिसाब से ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं इनफैक्ट इस पे बहुत स्ट्रेस देना चाहूंगा। आजकल स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है, जो भी हमारे मन में चिंताएं है उसका बहुत बड़ा रोल है। तो होता ये है कि जब भी हमको स्ट्रेस होता है, भगवान ने हमको इस तरीके से बनाया है कि हमारे हार्ट में दो सिस्टम है। एक होता है सिंपैथेटिक सिस्टम, जैसे कोई ब्लास्ट हो जाए, जी घबरा जाएगा, धड़कन तेज हो जाएगी, और मैं भूख आभास उस जगह से, ऐसा इसलिए होता है जैसे तेज तेज धड़के, खून की सप्लाई बढ़ जाए मसल्स तक और मैं भाग सकूं। अगर किसी मरीज को जीवन में रोजमर्रा की जिंदगी में स्ट्रेस हो रहा है, पर्सनल लेवल पे स्ट्रेस हो रहा है, किसी के घर में पैसे की प्रॉब्लम है, कोई प्रॉपर्टी का इश्यू है, कोई भी दिक्कत है, इनसे हमारा थोड़ा थोड़ा बीपी पल्स बढ़ते रहता है बार बार, जो हमारे हार्ट को नुकसान करता है, हार्ट में रीमॉडलिंग करता है। सारा खेल हमारी खून की नलकियों का है। खून की नलकियों के अंदर एक चमड़ी होती है जिसे बोलते हैं एंडोथेलियम। एंडोथेलियम अगर हेल्दी नहीं है तो प्रॉब्लम वाली बात है। एंडोथेलियम को नुकसान पहुंचाता है स्ट्रेस। अगर बीपी बढ़ेगा, पल्स बढ़ेगी, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है, पेशेंट स्मोक कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, रात को सो नहीं पा रहा, रात को नींद खुल रही है, तो इस तरीके से हमारे हार्ट का स्टाइल बढ़ जाता है किसी की ड्रेपिटी की वजह से। प्लस हार्ट में अगर माइनर ब्लॉकेज है, वो ब्लॉकेज रप्चर कर जाते हैं, इसे बोलते हैं प्लाक रप्चर, जिसे अचानक से हार्ट अटैक हो सकता है। तीसरी चीज, जो हमारी एंडोथीलियम है वो अनहेल्दी हो जाती है, उसमें कोलेस्ट्रॉल जम जाता है जो नुकसान करता है। चौथी चीज, प्लेटलेट, जो प्लेटें होती है जिसको प्लेटलेट्स बोलते हैं, वो एक्टिवेट हो जाती है और खून गाढ़ा हो जाता है इस केस में। जैसे जो जिम जाते हैं ओवर स्ट्रेस कर लेते हैं बॉडी को, मानसिक तनाव, शारीरिक तनाव, अचानक से जो जिम नहीं जाता, दोस्तों को देखे जिम जाना शुरू हुआ और वहां जाके 100-200 किलो उठा लिया, तो ये एकदम से बॉडी पे इतना स्ट्रेस पड़ गया जो जरूरी नहीं था उसको देना, तब भी पेशेंट की अचानक मृत्यु हो सकती है।
1: अगर किसी व्यक्ति को दिल में तकलीफ महसूस हो तो सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए?
2: सर, पेशेंट को इमीडिएटली अगर फील हो कि उसको छाती में जकड़न या भारीपन महसूस हो, इसमें हम बहुत स्पेसिफिकली देखते हैं कि पेशेंट को एक पॉइंट पे दर्द नहीं होना चाहिए। कोई पेशेंट बोलता है सर मुझे गहरा सांस लेने में एक पॉइंट पे चुभन हो रही है, ये हार्ट का दर्द नहीं है। अगर पूरी पूरी छाती में डिफ्यूज, छाती में राइट साइड हो या लेफ्ट साइड हो, जो कंधों में जाए, जो जबड़े में जाए, जकड़न, भारीपन, जलन या दर्द और सांस फूलना, घबराहट होना कि जैसे आज कुछ हो जाएगा, इमीडिएटली पेशेंट को हॉस्पिटल जाना चाहिए डॉक्टर के पास। और ज्यादा घबराना नहीं, चिंता नहीं करनी, चिंता उसको मारेगी उस समय, उसे आराम से ऑटो के जहाँ पे भी वो है साथ में हेल्प के लिए बुला ले किसी को, और इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंच के उसके वाइटल्स देखने चाहिए, बीपी पल्स, और एक इमीडिएटली ईसीजी कराना चाहिए जो हमें काफी गाइड कर देता है। बट ये 61 साल के आदमी में हो रही है जिसको शुगर है, बीपी है, जो स्मोक कर रहे हैं, बड़े अंकल है जिनके पिताजी को भी हार्ट अटैक आया था, तब मैं घबराऊंगा, तब पेशेंट को इमीडिएटली भागना चाहिए डॉक्टर के पास, ईसीजी करानी चाहिए उस समय।
1: अब मैं आपसे आखिरी प्रश्न करना चाहूंगा, वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर श्रोताओं के लिए आपका क्या संदेश होगा?
2: जी, मैं श्रोताओं को आपके द्वारा बताना चाहूंगा, मैं कुछ चीजों का ध्यान रखने के लिए बोलूंगा। अगर आप लोगों की उम्र 35-40 साल से ज्यादा है और आप पुरुष है और औरतें 50 के बाद, ऊपर से शुगर, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, सिगरेट, शराब, बीड़ी, तंबाकू, कोई पुराना हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, किडनी प्रॉब्लम, माता पिता, भाई बहन, दादा चाचा, ताऊ के लड़के, कजन में, परिवार में कम उम्र में हार्ट अटैक्स हुए हो, किसी की अचानक मृत्यु हुई हो, आप थोड़े मोटे हैं और आप कम चलते हैं, फिजिकल इनएक्टिविटी और स्ट्रेसफुल लाइफ है बहुत ज्यादा, तो आपको एक बार अपना चेकअप कराना चाहिए। हर 4 से 6 महीने अपना कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर का जांच करना चाहिए। ये 30 साल की उम्र से शुरू हो जाना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात और जो आखिरी बात मैं बताऊंगा, कुछ चीजें भगवान पे छोड़नी है, हमारे हाथों में सब कुछ नहीं है। आजकल दुनिया परेशान, सब लोग बहुत परेशान है, और शांति रखिए जीवन में और खुश रहिए अपने परिवार में, मतलब है ना।
1: जी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप रेडियो विदस्ता के साथ जुड़े और आपने हमारी श्रोताओं के लिए वर्ल्ड हार्ट डे पर ये सारी जानकारी दे दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया।
2: थैंक यू सो मच, थैंक यू, नमस्कार।

प्रस्तुत है कार्यक्रम गुप्तगु एपिसोड 5। आज के आमंत्रित मेहमान हैं कश्मीरी फोक सूफी गजल एवं बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर श्रीमती नीरजा पंडित जी। सहयोग दिया किरणी दास ने। रिकॉर्ड निर्देशन एवं प्रस्तुतकर्ता भारत सोपुरी।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी, लेके आया हूं आज कार्यक्रम गुप्तगु का एक और अंक। गायन एक सामान्य शब्द है जो संगीत गाने की क्रिया को दर्शाता है, जबकि सूफी गायन एक विशेष प्रकार का भक्ति संगीत है जो सूफी संतों के आध्यात्मिक विचारों से प्रेरित होता है। सूफी गायन में सूफियों की रहस्यात्मक भावनाओं, प्रेम, विरह और भक्ति को व्यक्त किया जाता है। कवाली सूफी संगीत का एक रूप है, लेकिन इसमें गजल, तराना और धमार जैसे अन्य रूप भी शामिल होते हैं। आज का ये विशेष कार्यक्रम गुप्तगु एपिसोड 5 समर्पित है उन सुरों को जो दिल को छूते हैं, आत्मा को मंत्र मुग्ध करते हैं। हमारे साथ है राष्ट्रीय स्तर की गायिका, एक सूफी फनकार और खास तौर पर ये आवाज जो कश्मीर घाटी की सरजमी से उठकर देश और दुनिया के दिलों तक पहुंची है। स्वागत करते हैं आज के आमंत्रित मेहमान का। स्वागत है श्रीमती नीरजा पंडित जी, आपका आज FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता के स्टूडियो में।
1: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद भारत जी, आपने वितस्ता रेडियो पे मुझे आमंत्रित किया है और बहुत बहुत शुक्रिया।
0: तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस सुरमई यात्रा की। सबसे पहले नीरजा जी, आपका एक बार फिर पुनः स्वागत है, अभिनंदन है हमारे इस स्टूडियो में आपके आने से। आज हमारा ये स्टूडियो पावन हो गया है।
1: नहीं, मैं ये कहूंगी कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे आज मौका मिला है आपके इस पवित्र जगह पे, आपके स्टूडियो में आने का एक अवसर मिला है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपना संक्षिप्त परिचय दें ताकि हमारी श्रोता आपको और अच्छे से जान सके।
1: मैं बेसिकली कश्मीर से हूं, नीरजा पंडित के नाम से जानी जाती हूं। पहले मैं नीरजा मुंशी थी शादी से पहले, और कश्मीर में थी। कश्मीर में एक छोटी सी जगह है श्रीनगर से कुछ ही किलोमीटर दूरी पे, जहाँ की हमारी शिव योगिनी ललेश्वरी है, उसी जगह को मैं बिलोंग करती हूँ, जहाँ की हवा खातून भी है
0: जी।
1: और पामपुर उस जगह का नाम है, और पामपुर बहुत पॉपुलर है, फेमस है काफी चीजों के लिए, जिसमें केसर उगता है
0: जी।
1: तो पूरी दुनिया में मशहूर है, वो सब जानते हैं, तो मैं उस जगह को बिलोंग करती हूँ।
0: सभी श्रोताओं को मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि रेडियो वितस्ता हमेशा कश्मीर के साथ जुड़ा है, क्योंकि इसका जो वजूद है वो कश्मीर के साथ जुड़ा है। मैं कोशिश करता हूँ कि अपने श्रोताओं को कश्मीर की उन हसीन वादियों से और वहाँ की जो खास बातें हैं उनके साथ आपको जोड़ूं, और आप हमारे साथ जुड़े और हम रेडियो वितस्ता के माध्यम से आपकी जिंदगी के हम सफर बन पाए। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हमारे पहले मेहमान है वो गायक जिन्होंने मंचों, फिल्मों और एल्बम्स में अपनी आवाज से जादू बिखेरा है। सबसे पहले आप ये हमें बताएं कि संगीत में आपका सफर कैसे शुरू हुआ।
1: एक्चुअली मुझे संगीत का जो एक हेरिटेज होती है ना, वो मुझे मेरी माँ से मिली है
0: जी।
1: और उनको उनकी माँ से मिली थी
0: जी।
1: तो मेरी माँ जब कश्मीर में फंक्शंस में गाया करती थी, फैमिली फंक्शंस में, मैं बहुत छोटी थी तो मैं उनको देखती थी और मैं भी इंस्पायर होती थी। मुझे कुछ नहीं पता था, बहुत छोटी थी, और मुझे वो आकर्षण होता था उनके संगीत की तरफ, और मैं उनके साथ बैठ के उनको फॉलो करने की कोशिश करती थी, उन गानों को गाने की कोशिश करती थी। हमारे कश्मीरी फोक म्यूजिक में तुम्बक नर एक इंस्ट्रूमेंट है जो शादियों में बजता है, जैसे ढोलक है पंजाबी में, तो वैसे वो तुम्बक नर मैं कोशिश करती थी बजाने की। छोटी सी थी बट एक जिद मेरी थी, वो मुझे थोड़ा बहुत याद है। मैं मम्मी के बगल में बैठ के उन गानों को रिसाइट करने की कोशिश करती थी और गाती भी थी। फिर छोटे से ही शुरुआत हो गई थी मेरी, और फिर स्कूल के फंक्शंस में गाना गाना, पार्टिसिपेट करना, और उसमें ये था कि कश्मीर रेडियो से बजते थे बहुत अच्छे अच्छे गाने उन दिनों, लाइट म्यूजिक, फोक म्यूजिक तो था ही था, लाइट म्यूजिक में हमारे वरिष्ठ जो गायक थे, जिसमें कैलाश मेहरा साधु जी हमारे, वो सारे मेरे गुरु समान हैं, और शमीमा देव जी थी, आरती तिकू जी थी, कई सारे सिंगर्स थे जो गाया करते थे, और उन गानों को भी मैं सुन सुन के रिसाइट करती थी और फंक्शंस में गाती थी स्कूल के। वहां से मुझे एनकरेजमेंट मिलती रही और सब बोलते थे तो बिल्कुल वैसे ही गाती है। और बचपन में एक ग्रेस्पिंग पावर भी होता है
0: जी।
1: तो उन गानों को मैं एग्जैक्टली उसी ट्यून में उसी तर्ज में गाने की कोशिश करती थी और वो अच्छा लगता था सबको। और फिर एनकरेजमेंट मिलती रही टीचर्स से कि नहीं तुम सब्जेक्ट ले लो, बिकॉज कश्मीर में सब्जेक्ट नहीं था स्कूल लेवल पे। तो जब 10th पास किया फिर मैंने म्यूजिक सब्जेक्ट लिया कॉलेज में और अपने गुरुजी से पंडित शंभुनाथ सोपरी जी जो कश्मीर के प्रख्यात म्यूजिशियंस में से रहे हैं, ही इज द मास्टर ऑफ क्लासिकल वर्ल्ड इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, एंड उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कश्मीर कॉलेजेस में, कॉलेज लेवल पे उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक को इंट्रोड्यूस किया था। तो मैंने सब्जेक्ट लिया और उनसे सीखना भी शुरू किया क्लासिकल म्यूजिक, बेसिक ट्रेनिंग जो होती है ना संगीत की। बस वहां से एक सीखने का सफर शुरू हो गया, फिर साथ साथ रेडियो टीवी वो सब भी
0: मतलब साथ साथ चलता
1: साथ
0: रहा।
1: साथ चलता रहा।
0: क्या मैं मानूं आपको ये विरासत में संगीत और जो संगीत के साथ आपकी जिंदगी चल रही है, जो आपकी संगीत की यात्रा है
1: जी,
0: तो क्या हम माने कि ये आपको विरासत में मिली है?
1: विरासत में तो मिली थी, हमारी फैमिली में सब गाते हैं, सबको भगवान ने वो वरदान दिया है गाने का,
0: सरस्वती माँ का आशीर्वाद है।
1: पर मुझे एक जब मैं वही मैं आपको बोल रही थी कि मैं गाने जब गाती थी स्कूल में रेडियो के गाने जो बजते थे उसमें पंडित भजन सोपुरी जी की नई नई कंपोजिशंस और बहुत मुश्किल कंपोजिशंस और उसको मैं गा देती थी, इनोसेंस में ही गा देती थी। बेशक उस वक्त बोल भी आधे समझ में नहीं आते थे बिकॉज पोइट्री एक पोइट्री होती है
0: जी जी।
1: बट बचपन में वो मैं ट्यून को पकड़ती थी, उन कंपोजिशंस को मुझे कुछ अट्रैक्शन मिलती थी और मुझे लगता था मैं भी कभी गाऊं रेडियो पे, मैं भी कभी दूरदर्शन में गाना गाऊंगी। ये एक वहीं से मुझे एक स्पार्क जैसी भगवान की तरफ से था कि मुझे कुछ करना है म्यूजिक में। तो भगवान की कृपा रही और माता पिता का आशीर्वाद, गुरुओं का आशीर्वाद रहा और मैंने कॉलेज टाइम से ही फिर शुरू किया सीखना क्लासिकल, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड सब्जेक्ट भी लिया और प्लस रेडियो में ऑडिशन करके शुरू किया मैंने एक प्रोफेशनल सिंगिंग, प्रोफेशनल सिंगिंग जी, जी जी जी। तो बहुत हार्ड वर्क होती है तभी जब हम इसमें पूरा डिवोट करेंगे अपने टाइम को। विरासत तो थी बट एट द सेम टाइम इंटरेस्ट और उसमें हार्ड वर्क।
0: आपने अपने इस सफर को खुद अपनी मेहनत से यहाँ तक बनाया है।
1: फिर मुझे ये भी नहीं पता कहाँ तक पहुँची हूँ मुझे तो ऐसा लगता है कुछ किया ही नहीं है, लिटरली लगता है जो मुझे पाना चाहिए था। बट ठीक है, डेस्टिनी में जितना लिखा होता है वो मिलता है हमको
0: जी।
1: ये था कि रेडियो टीवी के करने से काफी भजन जी के अंडर हम काम करते थे, भजन सोपोरी जी जो मेरे गुरुजी भी है, मेरे गुरु भाई भी है, वो सब जानते हैं उनको, इंटरनेशनल वर्ल्ड फेम आर्टिस्ट रहे हैं वो संगीत के, संतूर माएस्ट्रो। एंड देन कश्मीरी फोक म्यूजिक को उन्होंने कैसे रेवोल्यूशन लाया और उन धुनों को लेके मैं इंस्पायर होती थी, उनका कनेक्शन मेरे साथ है। वाई? बिकॉज मैं उन्हीं धुनों को सुन सुन के इंस्पायर होती रही और मैं अट्रैक्ट होती रही टुवर्ड्स दिस लाइट म्यूजिक, कश्मीरी म्यूजिक एंड सॉन्ग्स, जो मैं फिर शुरुआत भी हो गई रेडियो कश्मीर से और दूरदर्शन से।
0: हम आज गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आज आप हमारे स्टूडियो में हैं और हमारे श्रोताओं से आज मुखातिब है। आपसे बहुत सारी बातें जानेंगे और श्रोताओं की जो जिज्ञासा है, उम्मीद है कि उन सारे सवालों के जवाब हम नीरजा जी से लेंगे। पर मैं चाहूंगा कि हमारी श्रोता इंतजार कर रहे होंगे आपके कंठ से सुनने के लिए।
1: जरूर जरूर
0: जी।
1: मैं एक गुरुस्तुति से ही शुरू करूंगी, शुरुआत उन्हीं से मैं करना चाहूंगी
0: जी, जी।
1: एक छोटी सी सूफी भजन से, पॉपुलर भजन है ये, नुसरत फतेह अली जी ने गाया है।

0: बहुत खूब निर्जा जी, आपने अभी कश्मीर की बात की, कश्मीर के बारे में आपने बोला, तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, हम सब के लिए, चाहे हम किसी भी प्रांत में रह रहे हो, हम सब के लिए माँ बोली कितनी महत्वपूर्ण है? क्या हमारी पहचान माँ बोली से ही हो सकती है? हमारे लिए माँ बोली को बचा के रखना, उसका संरक्षण करना कितना जरूरी है, चाहे वो कश्मीर की बात हो, चाहे वो किसी प्रांत की बात हो?
1: भाषा एक ऐसी चीज है, आप कहीं भी दुनिया में चले जाओ, कहीं भी आपको अपने रीजन का कोई दिखता है, जब तक आप उसको अपनी भाषा में बात नहीं करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि वो मेरे प्रांत का है या कहाँ का है। जब अपनी भाषा में हम बात करते हैं, किसी भी जगह पे हो हम, तो एक अलग ही अपनापन लगता है
0: जी।
1: तो ये भाषा का एक बहुत बड़ा, हमारे लिए एक बहुत बड़ी आइडेंटिटी है
0: जी।
1: भाषा नहीं तो अंग्रेजी सब बोलते हैं, तो फिर हमारे में और दूसरी जगह से होंगे या प्रांत से होंगे, जो अपनापन हमारी भाषा में बात करने से होता है, तो वो हमको किसी और अंग्रेजी में, नेशनल लैंग्वेज या इंटरनेशनल लैंग्वेज में नहीं आएगा
0: जी।
1: वो तो सबको करना ही पड़ता है, बिकॉज काम करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, तो वो इंटरनेशनल लेवल के लिए हमको इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, वो सब तो करना ही पड़ेगा काम चलाने के लिए। बट जब हमको अपनेपन की बात आती है, तो वहाँ पे हमारी मातृभाषा है, मातृभाषा से ही हमारी पहचान है। और कश्मीर से निकलने के बाद मैं मुंबई चली गई मेरी शादी के बाद
0: जी।
1: तो हमारे पास कुछ था ही नहीं रिकॉर्ड मेरा, जो मैंने कश्मीर में रेडियो गाने गाए थे, टीवी पे गाने गाए थे,
0: सब कुछ छूट गया था,
1: कश्मीर में ही छूट गया था। और उसको रिवाइव करने के लिए, क्योंकि संगीत मैं कर ही रही थी, कश्मीरी म्यूजिक तो मेरा था ही वहाँ पे, तो उसको मैं कैसे बचाऊं, क्योंकि छूट गया, और आगे की जनरेशन तक कैसे हमारी ये मातृभाषा आगे जाएगी
0: जी।
1: तो मुझे म्यूजिक का एक बहुत बड़ा माध्यम लगा, म्यूजिक के थ्रू हम इसको कर सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं भाषा को। तो मैंने एल्बम्स बनाने शुरू किए, उसको री रिकॉर्ड किए मैंने, जो कश्मीर के पॉपुलर गाने थे, जो मैंने भी गाए थे और जो वहाँ के बाकी सिंगर्स ने भी गाए थे, चूंकि रिकॉर्ड कुछ था नहीं अपने पास, तो उसको रिवाइव करने के लिए मैंने काफी मेहनत की, एफर्ट लगाया और उसको रिकॉर्ड किया। और तो रिकॉर्ड करने के बाद फिर सब जगह जगह मैंने भेजी वो सीडीज, जहाँ जहाँ हमारी कश्मीरी बरादरी थी उनको भेजा मैंने, उनको दिए मैंने सुनने के लिए। और जो बच्चे पैदा हुए थे, जो बड़े हो रहे थे, तो म्यूजिक एक बहुत बड़ा

0: माध्यम है। अगर हम कश्मीरी गाने चलाते रहेंगे घरों में, हमारे जो रीजनल गाने हैं, तो हमारे बच्चों के कानों तक पहुंचती है चीजें सुनने को, फिर उनको फिर वो एडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे और उसके थ्रू उनकी भाषा उनको समझ में आने लगेगी। मैं छोटी सी एग्जाम्पल अपनी ही दे दूंगी। जब मैं बहुत छोटी थी, मैंने पहले कहा कि मेरे को भाषा का कुछ ज्ञान नहीं था, बहुत छोटी थी, मतलब थर्ड फोर्थ सेकंड से ही इनफैक्ट शुरू किया था। जो मैं गाने गाती थी शमीमा आजाद जी के, कैलाश मेहरा साधु जी के, आरती टिक्कू जी के, मुझे सिर्फ ट्यून पकड़ती थी, भाषा मुझे उस वक्त कुछ नहीं समझ में आती थी। बट जब मैं प्रोफेशनली इसको करने लगी, धीरे धीरे धीरे धीरे जब मैंने रेडियो पे गाना शुरू किया, मैं 11th में थी, छोटी थी, क्लासिकल तो सीख ही रही थी, मगर ये पोइट्री मुझे किसी ने सिखाई नहीं, ये मुझे अपने आप ही फिर इसकी समझ आ गई करते करते करते करते। जब मैंने गाने गाने शुरू किए और मेरी मैच्योरिटी लेवल तो धीरे धीरे फिर इंसान की आई जाती है, और मैंने समझा कि नहीं, ये तो फिर करते रहने से सुनते रहने से, और जितना इसके साथ जुड़े रहो इन गानों के साथ, वो समझ आ गई मुझे। तो मुझे लगा कि ये म्यूजिक के फॉर्मेट में बच्चे सुनेंगे गाने, कश्मीरी गाने चलते रहेंगे, जिसमें सबसे बड़ी एग्जाम्पल मेरा बेटा है, वो भी बचपन से मेरे साथ करता रहा है, सीखता रहा है, सुनता रहा है, और मेरे ये एल्बम्स पे काम उसने भी किया जब वो बड़ा हो रहा था। सिंस उसका म्यूजिक ही उसने अडॉप्ट किया है, म्यूजिक में ही है वो। बट उसको ये बात, उन दोनों बच्चों को, मेरी डॉटर भी है, ये गाने सुनते सुनते उनको कश्मीरी भाषा मैक्सिमम आ गई, जबकि हम घर में भाषा बोलते हैं कश्मीरी, बट म्यूजिक के थ्रू उनको ज्यादा हेल्प हो गई। तो मुझे लगा ये बहुत बड़ा माध्यम है हमारा संगीत, अगर हम कश्मीरी गाने गाते रहेंगे, बजाते रहेंगे रेडियो पे, उसको एडॉप्ट करेंगे, तो हमारी भाषा जल्दी पकड़ सकते हैं बच्चे।
1: नीजा जी, आपने बहुत सारी भाषाओं में गाया है और अलग अलग संगीतकारों के साथ आपने काम किया है, पर अभी मैं इसी बात पर रहना चाहूंगा, कश्मीरी भाषा है वो हमारे लिए, हमारे संस्कृति के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है और किस तरीके से हम उस कश्मीरी भाषा को समझ पा रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं लल दिद की बात करूंगा, क्योंकि उनके जितने भी वाक है वो कश्मीरी में ही है
0: जी,
1: तो मैं चाहूंगा कि उसके बारे में आप बताएं।
0: जी, हमारे कश्मीर में तो काफी वरिष्ठ सूफी सेंट्स रहे हैं और बहुत जबरदस्त लेवल के ऊंची अवस्था में रहने वाले सेंट्स रहे हैं, पीरवर रेशवर बोलते हैं, क्योंकि वहाँ काफी सारे गुप्त संत भी थे जो एकदम हाई लेवल के, उसमें से ललेश्वरी भी थी वन ऑफ देम, और वो शिव योगिनी थी, उनको कहा जाता था ललेश्वरी माता। तो मैं उसी जगह को बिलोंग करती हूँ, तो बचपन से उनका वो सब सुना है, मैंने देखा तो नहीं है, बट सुनते हुए, फिर उनके वाक सुनते हुए, सुने भी हैं, सीखे भी हैं, तो काफ़ी सारे वहाँ के हैं सूफी पोइट्स हैं, और संत परंपरा से जुड़े भी काफ़ी हमारे संत है, तो मैंने कई गाए भी हैं। और अभी आपने ललेश्वरी की बात की है, तो मैं ललेश्वरी का वाक आपको सुनाते हुए फिर एक सूफी गाना ही सुनाऊंगी। सूफी मतलब फिलोसोफिकल पोइट्री है, जो डोलवाल साहब का है। डोलवाल साहब बहुत बड़े शायर थे, कंपोजर थे, सिंगर थे उस जमाने के, तो उसको मैंने रिकॉर्ड भी किया है मेरे एक एल्बम में, उसका नाम है रिश्वर, तो उसमें सूफियों के ही गाने हैं उस एल्बम में, तो ये भी एक गाना है, मैं लालबाग से शुरू करूंगी।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता। कार्यक्रम चल रहा है गुफ्तगू, और आज हम हमारे देश की और विश्व प्रसिद्ध गायिका से बात कर रहे हैं, और हमारे साथ है श्रीमती नीरजा पंडित जी, जो मुंबई से खासकर हमारे अम्बाला के श्रोताओं के लिए इस समय स्टूडियो में है और बात कर रही है। नीरजा जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि आज के समय में संगीत में जो बदलाव आ रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, संगीत ही नहीं, हमारी जिंदगियों में भी बदलाव तो आता ही है
0: जी।
1: और कहते हैं ना, परिवर्तन संसार का नियम है, तो हर चीज में बदलाव आता ही है, तो हमारी जिंदगियों में भी बदलाव आया है। तो जैसे हमारे संगीत को लेके मैं बात करूंगी, काफी कुछ चेंजेस आ गई, बिकॉज जो जनरेशन अभी बड़ी हो रही है, जो ग्रोइंग जनरेशन है, जो इस फील्ड में है, म्यूजिक के फील्ड में है या एक्टिंग के फील्ड, किसी भी फील्ड में है, तो बदलाव तो आना ही है, मगर वो बदलाव भी अच्छे ढंग से आए तो बहुत अच्छा है,
0: सकारात्मक होना चाहिए।
1: करेक्ट, हाँ जी, हाँ जी। तो उस बदलाव को हमको देखना है, सुपरवाइज करना है। अगर बच्चे कुछ कर रहे हैं, हमारा क्रिएटिव वर्क है कुछ, या जैसे मेरे म्यूजिक को लेके मैं बात करूंगी कि जब कुछ नया गाना रिकॉर्ड होता है, जैसे अभी सलीम सुलेमान म्यूजिक डायरेक्टर्स है, म्यूजिक इंडस्ट्री के, फिल्म इंडस्ट्री के वरिष्ठ संगीतकारों में से हैं
0: जी।
1: तो उनके साथ कश्मीरी फोक म्यूजिक इंट्रोड्यूस किया है उन्होंने, अपने मर्चेंट रिकॉर्ड्स उनकी म्यूजिक कंपनी है, वन ऑफ द लीडिंग म्यूजिक कंपनीज, उसमें कश्मीरी म्यूजिक को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। वो ओरिजिनल म्यूजिक भी रिकॉर्ड करते हैं, तो उनका भूमि एक एल्बम आता है हर साल
0: जी।
1: उसमें वो 10 गाने रखते हैं, और वो अलग अलग रीजन्स को लेके
0: बनाते
1: हैं, अलग अलग भाषाओं में भी होता है, और फिर क्लासिकल बेस्ड, डिवोशनल, हर तरह का गाना वो रिकॉर्ड करते हैं और रिलीज करते हैं। तो कश्मीरी फोक म्यूजिक को भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। तो मेरा कहना ये है कि वो मॉडर्न स्टाइल भी है, और आज की यूथ जो है, जो उसको लाइक करे, उसके हिसाब से भी बना है। बट एट द सेम टाइम कश्मीरी गाना उन्होंने लिया है, जो मैंने अभी गाया आपके लिए, नाज़नीन यार मैं नीच मुलाकात, ये पॉपुलर गाना रहा है कश्मीर का, ये सब जानते हैं ये गाना, तो काफी पुराना ट्रेडिशनल गाना रहा है, तो इसको उन्होंने ले लिया और कश्मीर से सिंगर को बुला के, एंड देन एक यंग बडिंग आर्टिस्ट राज पंडित, उसको लिया उन्होंने, और दोनों का कॉम्बिनेशन में ये गाना बन गया। जब गाना बना तो शुरुआत भी वैसी हुई, और धीरे धीरे धीरे धीरे उसका ग्राफ ऐसा बन गया गाने का कि गाना एज इट इज है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा गाने में, पर वो बनाने का जो तरीका था वो प्रेजेंट जनरेशन के हिसाब से, वो कंटेम्प्रेरी म्यूजिक के हिसाब से बना है पूरा, बिकॉज वो रीजनल लोगों के लिए ही नहीं था, वो ग्लोबल लेवल पे वो भूमि एल्बम आता है
0: जी।
1: तो पूरे यूनिवर्स तक पहुंचती है वो चीज, पूरे ग्लोब में पहुंचती है वो चीज, जो उनका वो प्लेटफॉर्म है, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट ह्यूज प्रोडक्शन है उसकी, तो वैल्यू उसकी। तो उसमें वो गाना उन्होंने जब बनाया तो उसको इतना सुंदर तरीके से उसको एलोबरेट किया है म्यूजिकली, म्यूजिक ट्रीटमेंट जो उसमें है, आप सुनेंगे, आपने सुना भी होगा
0: जी।
1: तो वो लगता नहीं है कहीं दूर दूर से कि वो गाना खराब हुआ है या डिस्टॉर्ट हुआ है, हमारी भाषा को कुछ उधर उधर किया है, नहीं, बड़े प्यार से, बड़े सुंदर तरीके से उसको उन्होंने बनाया है, प्रेजेंट किया है। तो वैसे ही मैं चाहूंगी कि एक खूबसूरती के साथ अगर हम काम करें, आज की जनरेशन जो चेंजेस तो ला रहे हैं, लानी भी पड़ेगी, बिकॉज उनकी सोच अब डिफरेंट है
0: जी।
1: वो होनी लाजमी है, उसमें कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए या हमको कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम बैलेंस होके करें, और उसमें बेसिक जब आप रखते हो साथ में, बेस जो हमारी ट्रेडिशनल म्यूजिक है, क्लासिकल बेस्ड म्यूजिक है, अगर वो साथ में चलता रहे और उसको उसी ढंग से पेश किया जाए और नयापन भी रहे, ताकि दोनों जनरेशन, चाहे वो पहली जनरेशन हो या आगे की जनरेशन, अभी की जनरेशन हो, सब कोई उसको पसंद करे, तो वो एक बहुत अच्छा चेंज है, उसमें कोई गलत बात नहीं है।
0: आपने अभी भूमि एल्बम की बात की, और आपने राज पंडित जी की बात की, आपके सुपुत्र हैं वो, संगीत के साथ जुड़े, एक माँ जब अपने बेटे को इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे देखती है तो वो क्या सोचती है?
1: मैं तो, वो हमारा तो यही रहा है कि बस उसने अडॉप्ट किया म्यूजिक को, बचपन से वो सीखता रहा। पहले वो तबले से शुरू किया, बाद में की पियानो से शुरू किया, बाद में धीरे धीरे धीरे धीरे वो सिंगिंग तो कर ही रहा था, सीख ही रहा था, तो गुरुओं से सीखना शुरू किया। एंड देन इनके साथ संपर्क किया, संगी सलीम सुलेमान जी, वो पढ़ाई भी साथ साथ चल रही थी, तो वो इसी माहौल में बढ़ता रहा। और मुझे कभी भी वो ऐसा नहीं लगता है कि भाई वो कहीं पहुंचा है हाई लेवल पे, या मुझे तो ऐसा लगता है बस अभी शुरुआत है, आगे बढ़ता रहे और यही कोशिश रहती है कि अच्छा काम करे, आगे बढ़ते रहे, आशीर्वाद रहे सब बड़ों का, गुरुओं का आशीर्वाद रहे। मेरी तो यही रहती है थिंकिंग, मैं कभी भी वो सोचती नहीं हूँ कि मैं कहीं पहुंची हूँ, मेरा बेटा कहीं पहुंचा है, बस ये है कि यू फील प्राउड। प्राउड तो होता है, प्राउड इन नॉट इन दैट सेंस कि अब इसने फतेह पा लिया है तो फिर अब बस खत्म, इतना ही है। शुरुआत अच्छी है, वो बस ब्लेसिंग है और उसकी मेहनत है, हार्ड वर्क है। बिकॉज जब आप संगीत के इसमें जगत में जाते हैं, अगर कुछ पाना है तो उसके लिए जीना पड़ता है, उसी रंग में जीना पड़ता है, आपको काफी सारी चीजों का कंप्रोमाइज करके आपको उसी लय में रहना पड़ता है, तब जाके वो चीज अचीव होती है।
0: यानी
1: तो बस कोशिश जारी है, यही
0: यानी कि त्याग, समर्पण और निरंतर काम करना बहुत जरूरी है।
1: एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल।
0: इसके साथ ही जुड़ा हुआ एक प्रश्न करना चाहूंगा कि आज के युवाओं को
1: जी
0: आप क्या कहना चाहेंगे जो खास करके संगीत और गायन क्षेत्र में है?
1: बस यही है जो मैंने कहा कि अगर किसी को करना है, म्यूजिक में ही जाना है, तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा। आपकी पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है, एंड देन मेहनत, हार्ड वर्क और सीखना। सबसे पहले बेसिक ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, जो एक अच्छे गुरु से आपको मिल सकती है
0: जी।
1: अच्छे गुरुओं के साथ उठना बैठना सीखना, तब आप इसको अचीव कुछ कर सकते हैं। देन उसके बाद जो गुरु ने सिखाया उस पे चलना, उस पे अमल करना, उसके साथ टच में रहना। मैंने अभी कहा कि जीना पड़ता है, तो संगीत को एक जीने की बात है, तो आपको बहुत उसमें समर्पण भाव से करना पड़ेगा, तब आप जाके आगे बढ़ सकते हैं, वो बहुत जरूरी है।
0: एक कलाकार के लिए विनम्र होना कितना जरूरी है, चाहे वो किसी भी कला का हो?
1: बहुत जरूरी है, वही तो चीज है, ऊपर वाला ही देता है ना, जो हमको देता है
0: जी।
1: हमको कहीं, हम खुद से नहीं क्रिएट कर रहे हैं कुछ, जो भी हमारे, जैसे मैं गा रही हूँ तो मुझे अगर गला कुछ चल रहा है तो वो ऊपर वाला ही चला रहा है ना, मेरे बस में कुछ भी नहीं है। जब वो चाहेगा तो वो गवाएगा, नहीं चाहेगा तो नहीं गवाएगा, कुछ भी मैं करूँ। तो जब तक आप उसके शरण में नहीं हो, समर्पण नहीं हो, भगवान के आप जिसको मानते हो उनके इसमें सरेंडर भाव में नहीं हो, तो तब तक नहीं होता है कुछ, तो बहुत जरूरी है।
0: अब हम बात करते हैं बेटियों की। हमारे समाज की नींव है बेटी, जब वो बाबुल का घर छोड़ अपने पिया के घर जाती है। इसके संदर्भ में आपने अपनी एक सीरीज साज़े कश्मीर में एक गीत गाया है
1: जी,
0: तो मैं चाहूंगा कि हमारे श्रोताओं के लिए आप वो सुनाएं और फिर हम इस कार्यक्रम का अगले सेक्शन में समापन करेंगे।
1: जी जी, ये एक बहुत ही सुंदर रचना है, नजीर दास जी कश्मीर के बहुत वरिष्ठ पोएट्स में से रहे हैं, उन्होंने लिखा है। तो जब मैंने इसके लिरिक्स सुने, किसी से मैंने सुने थे और मुझे बहुत प्यारा लगा, तो मैंने इसको रिकॉर्ड किया और वो अवेलेबल है यूट्यूब पे। और इसकी कंपोजिशन पंडित भजन सुपुरी जी की है। फोक बेस्ड कंपोजिशन है, बहुत पॉपुलर कंपोजिशन है पंडित भजन सुपुरी जी की है।

राम राम। जहां दूध दही का खाना योवा मेरा हरियाणा, जहां जामदे न्याणे नु सखैदे गाना बजाना योवा मेरा हरियाणा, जहां जोड़ा के ऊपर बैठ कर नहाना योवा मेरा हरियाणा, जहां अंडिया मा दाल पकाना योवा मेरा हरियाणा। तो इसे हरियाणा के बारे में और ज्यादा जानने वास्ता मैं लेकर आई हूँ हरियाणवी कार्यक्रम की वो छार, जिसमा थानू लेकर जाऊंगी अलग अलग गांव के अलग अलग लोगों के बीच मा, अर्थम जान सकांगे मारे हरियाणा के रीति रिवाजा के बारे मा। तो सुनना ना भूलियो हर शनिवार और रविवार सवेरी 7:05 पा और दोपहर नु 2 बजे सिर्फ और सिर्फ थारे अपने रेडियो रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ सा। धन्यवाद, सुनते रहो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता।

दोस्तों बोजन एफएम नमत अशारिया सिफर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी हुन बोजान रूजियो पनिन पसंदीदा बात।

0: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
1: खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन, सेट कर दियो 90.0 ओन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

0: आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह, जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं, बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हमसफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई, और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी अंबाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अंबाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की, जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से। इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अम्बा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था, और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अम्बा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमू के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था, और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंबाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं, और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अंबालावासी को गर्व है।

0: 1857, वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में होगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर केसी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुले आम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें 1.63 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाएगी।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरें, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है, जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की, जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ, अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हो तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

0: अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की, विरासत जो आज भी जीवित है। अंबाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अंबाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है, और भगवान वामन का एक मंदिर भी है जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी, और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अंबाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहाँ तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहाँ खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार

0: श्रोताओं, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। ये उद्योग हर साल लगभग 3,000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक। 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक, ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी, दूजी और भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है वहां लहर का संगीत, युगो युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगो युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूँ विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर हमेशा है आपका हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।

0: EK Dutch Mail. EK Lata Mangeshkar. EK Radio Mitasta. हम सफर जिंदगी का
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर अंबाला केंट से हमारी ये प्रसारण सुनते रहिए

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता अंबाला का अपना रेडियो।

सुनें अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

0: सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ओन योर फोन और मिला दियो 7056413010 पा फोन।
1: यो सा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।
2: You are listening FM 90.0 MHz Radio Vitasta Hamsafar Zindagi Ka Ambala Kent's first community radio licensed by Ministry of Information and Broadcasting Government of India.
3: Tochu Bozan FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी हूँ।
4: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी।
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर अम्बाला कैंट से हमारे प्रसारण सुनते रहिए।

0: You are listening 90.0 FM, Radio with a Star, Hamsafar Zindagi Ka.
1: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं सिंगर नीलम नारायण। मेरा एक बहुत प्यारा वीडियो सॉन्ग मीठे मीठे इश्क की रिलीज हो चुका है, जो आप रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पे सुनने जा रहे हैं। अपना स्नेह जरूर दें। धन्यवाद।

0: कार्यक्रम घर परिवार सुनने वाली सभी प्यारी बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार और रमेश जी आपको मेरी प्यार भरी नमस्ते।
1: जी बहुत बहुत नमस्ते और आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया,
1: क्योंकि आज पहले मैं पहुंचा हूं स्टूडियोज में।
0: जी बिल्कुल सही कहा, आज मैं थोड़ी लेट हो गई।
1: आप गए थे पानी पीने।
0: जी
1: है ना जी।
0: जी
1: इसलिए मैंने सोचा मैं ही पहुंच जाऊं और मैं आपका स्वागत करूं।
0: जी मेरा स्वागत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: अच्छा लगा ना जी।
0: जी बहुत अच्छा लगा।
1: जी जी जी तो बताइए आज किस टॉपिक पे बात होगी।
0: जी आज हम बच्चों में किस तरह से आत्मविश्वास पैदा करें इसी बारे में आज हम बात करेंगे।
1: अंग्रेजी का एक शब्द है सेल्फ कॉन्फिडेंस।
0: जी बिल्कुल,
1: बहुत जरूरी है। बच्चे काफी ज्यादा शाइनेस फील करते हैं, लेकिन आजकल वैसे बच्चे बड़े तेज हैं।
0: जी बिल्कुल सही कहा।
1: और क्योंकि नेट की वजह से काफी इंफॉर्मेशन उनके पास होती है, बच्चों में पढ़ने की जो आदत है वो भी बहुत अच्छी होती है। फिर भी बहुत जरूरी बनता है कि आत्मविश्वास या सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करें तो बहुत जरूरी है।
0: जी हाँ, और अब मुझे लगता है कि यहाँ प्रोग्राम में एक गीत की जरूरत है।
1: बिल्कुल जी, प्रोग्राम के शुरू में जैसा आप जानते हैं हम तो गाने की बात जब करते हैं तो शुरुआत तो गीत से ही होती है।
0: जी।

0: जैसा अभी हम इस गाने से पहले बात कर रहे थे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरत है, बच्चों में होनी चाहिए, और इस पर आप चर्चा करेंगे।
1: जी बिल्कुल, देखिए किसी भी देश का भविष्य बच्चों पर निर्भर करता है, इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों में आत्मविश्वास पैदा किया जाए ताकि वह जीवन में सफलताओं की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके। इसके लिए ज़रूरी है कुछ बातों पर गौर करने की।
0: बिल्कुल, अपने मन में डर को बाहर निकालना है
1: जी,
0: खौफ को बाहर निकालना है, ये करना है, इस तरह का जज्बा बच्चों में होना चाहिए।
1: जी देखिए, सबसे ज़रूरी है कि बच्चों की बातों को अनदेखा ना करें, उनको ध्यान से सुने और उनकी बातों में रुचि भी दिखाएं, और बच्चों के साथ संतुलित व्यवहार करें। कई बार कभी किसी काम के लिए काम को करने के लिए माँ बच्चे को रोकती है, पर दूसरी तरफ पिता उसी काम को करने में बच्चे का साथ देता है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है ऐसी सिचुएशन में कि क्या सही है और क्या गलत।
0: बिल्कुल सोनू जी, एक तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई माता बच्चे से कोई काम करवाना चाहती हैं और कहती हैं ये काम करिए, पिता का भी साथ मिलना चाहिए उसे, तभी जाके उसके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसमें बढ़ोतरी होगी।
1: जी बिल्कुल, देखिए जब दोनों तरफ से हाँ होगी तो उसे पता चलेगा कि ये काम सही है और ये मुझे करना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और जहाँ तक हो सके बच्चे को झूठ बोलकर बहलाने की कोशिश ना करें, उसे आप अपनी परेशानियों मजबूरियों से अवगत कराएं, इससे बच्चे में जो आत्मविश्वास है वो बढ़ेगा और ये भी उसमें विश्वास होगा कि आपने उन्हें अपनी प्रॉब्लम से अवगत करवाया है, उसने अपनी प्रॉब्लम्स में शामिल किया
0: जी
1: है।
0: बिल्कुल, देखिए एक तो हम कहते हैं कि बच्चे का पहला गुरु कौन होता है, उनके माता पिता, उसके बाद स्कूल में जो हमारे टीचर्स होते हैं वो उनके गुरु बन जाते हैं, लेकिन माँ बाप का सबसे बड़ा अहम रोल होता है बच्चे की बेहबूदी के लिए। आमतौर पे ये देखा गया है कि अगर कोई घर में आता है, दरवाज़ा खटखटाता है, तो बेटा बाहर आता है और पिताजी उसको कहते हैं कि बोलना वो यहाँ नहीं है, तो यानी झूठ जो है घर से ही उसकी शुरुआत हो जाती है। इस तरह की बहुत सारी आदतें हैं जो हम खुद या माता पिता बच्चों में डालते हैं, इनसे
1: हाँ।
0: बचना चाहिए
1: ताकि बाद में हमें परेशानी ना हो और हम ये ना कह सके कि हमारे बच्चे हमसे झूठ बोलते हैं।
0: पहले जमाने में क्या होता था, अब तो वैसे काफी हद तक सिगरेट लोग पीना छोड़ गए हैं, और लेकिन पहले जमाने में सिगरेट की डिब्बी जो लानी है, बच्चे को पैसे पकड़वाते थे और बाजार से सिगरेट की डिब्बी आप लाइए, ये आदत भी गलत है। और मैंने देखा है कि इस तरह की जब आदतें जब शुरुआत हो जाती थी तो फिर बच्चे में भी इसी तरह की आदत पड़ जाती थी।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने, देखिए बच्चों को ज़्यादा टोका टाकी भी ना करें, उसके पास आप इतना साथ हो जाएं कि वह अपनी बातें भी झिझक आपसे शेयर कर सके।
0: बिल्कुल, आजकल तो एक ट्रेंड भी है कि बच्चों के साथ आप दोस्त बन के रहिए, है ना जी, अपने बेटे के साथ अपनी बेटी के साथ दोस्त बन के रहिए और उसके बाद हर बात उसे आप साझा करिए।
1: और बच्चा अगर आपका कोई गलती करता है तो आप उसे डांटे या मारे नहीं, बल्कि उसे विश्वास में लेकर प्यार से समझाने की कोशिश करें।
0: अरे तो हमने तो काफी डांट खाई है, हमने मार भी खाई है, लेकिन आजकल माता पिता में उस तरह की हिम्मत नहीं होती है कि बच्चे को मारे, आजकल बच्चे जो हैं बॉडी बिल्डर्स होते हैं।
1: जी देखिए, वो तभी बॉडी बिल्डर्स बनते हैं जब हम छोटे, जब वो होते हैं अच्छे संस्कार उनको नहीं देते हैं।
0: बिल्कुल, ये आपने सही बताया है कि बच्चे को कभी डांटिए नहीं और किसी के सामने ना डांटिए, ये सबसे बड़ी बात होती है। और उसके बाद बच्चा कोई भी जब किसी के सामने आप उसको डांटते हैं तो कोई भी स्टेप उठाने पे वो मजबूर हो जाता है, इसलिए बच्चे के साथ रहिए दोस्त बनकर।
1: और एक बात और कहना चाहेंगे, उन्हीं घरों के बच्चे कम आत्मविश्वासी बनते हैं जिनके पेरेंट्स में आपस में अनबन होती है, तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे हों तो आपको भी अच्छा व्यवहार करना होगा एक दूसरे के साथ।
0: माता पिता को चाहिए कि बच्चे के सामने झगड़ा ना करें।
1: जी बिल्कुल,
0: और ये बहुत जरूरी है। बहरहाल काफी बातें हुई हैं, मुझे लगता है कि यहाँ हमें रुकना पड़ेगा।
1: जी बिल्कुल, रुकना पड़ेगा क्योंकि जरूरत है।
0: जरूरत है एक गाने की।

0: जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना जी, बच्चे की सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात हो रही थी, जैसे शब्द का हमने इस्तेमाल किया कि बच्चे के साथ दोस्त बनकर रहिए, तभी जाके आपका बच्चा तरक्की कर सकता है और ऊंचाइयों को छू सकता है।
1: जी बिल्कुल सही,
0: ये बहुत जरूरी है। और
1: अब हम आगे चलेंगे और लहसुन की बात करेंगे। देखिए, लहसुन को कच्चा खाने से शरीर में के कई लाइलाज जो रोग हैं वो ठीक हो जाते हैं। हर रोज लहसुन की 2 या 3 कच्ची तुरियां खाली पेट खाने से खून में बड़ी चर्बी है जो वो पतली हो जाती है।
0: आमतौर पे जो जो जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनके लिए कहा गया है कि अगर इस तरह का आप इस्तेमाल करें तो आपके वो जो खून है उसमें पतलापन आएगा और आपकी नाड़ियों में वो खून ठीक ढंग से चलता रहेगा।
1: जी बिल्कुल सही कहा। देखिए, इससे खून भी साफ होता है। दमा, खून में अगर आपके शुगर है, मानसिक तनाव है, सिर दर्द है, जोड़ों का दर्द, कमजोरी, बदहजमी जैसे कई रोग ठीक हो जाते हैं अगर हम डेली रूटीन में कच्ची तुरी खाते हैं 2 या 3।
0: जी, हालांकि मैंने सुना था कि सोनू जी कि इसको भून के अगर खाया जाए तो ज्यादा बेहतर रहता है। बहरहाल
1: जी बिल्कुल, ये बात आपने सही खाई। लेकिन देखिए, भूनकर दाल या सब्जी में
0: ये
1: डालने
0: बात
1: से
0: मैंने
1: इसकी
0: सही खाई नहीं बल्कि सही कही। जी
1: देखिए, लहसुन को तड़के में आप भूनकर दाल और सब्जी में डालने से देखिए इसकी खुशबू और तीखापन तो खत्म हो जाता है। और आपने सही कहा कि जो दाल सब्जी है वो तो स्वाद बन जाती है, पर इसके जो औषधि गुण है वो खत्म हो जाते हैं।
0: और ये एक प्राचीन, इसको हम मेडिसिन में भी इस्तेमाल करते हैं। आजकल जो दवाइयाँ बनती हैं ना जी, उसमें लहसुन को इस्तेमाल में लाया जाता है। और कहते हैं कि मैंने सुना है कि आपकी जो पाचन शक्ति है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है अगर आप लहसुन ले लें। इसलिए हर सब्जी में, यहाँ पे इस एरिया में, हर जगह लगभग लहसुन लेते हैं।
1: देखिए, बिना गर्म किए लहसुन का जैम बनाकर सेवन किया जा सकता है, जिससे कि लहसुन के जो औषधि गुण हैं वो बरकरार रहेंगे।
0: बिल्कुल, लहसुन का पेस्ट बना सकते हैं और उसके बाद उसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है।
1: देखिए, आप जैम बना सकते हैं। किस तरह से बना सकते हैं हम बताएं?
0: जी बिल्कुल।
1: देखिए, 250 ग्राम आप लहसुन की तुरियों को अच्छी तरह बारीक पीसकर शीशे की खुली मुंह वाली शीशी में डालकर उसमें 250 ग्राम आप शहद डालें और आपका जो जैम है वो तैयार हो जाएगा। और लहसुन के जैम में आप 50 ग्राम अदरक भी बारीक करके डाल सकते हैं। टेस्ट दुगना हो जाएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने और ये आपको फायदा दे सकता है, बल्कि बहुत ज्यादा फायदा दे सकता है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बताई हमें कि लहसुन के जो फायदे हैं बहुत जरूरी है, लेना चाहिए लेना चाहिए। हम आपको एक गाना सुनाते हैं।
2: हम तुम ये बहार

0: बहुत जरूरी है कि आमतौर पर सर्दियों में इस्तेमाल किया जाता है लहसुन, और ये इसकी तासीर गर्म रहती है, तो इसलिए शरीर में गर्माहट भी रहती है और बहुत फायदे हैं जी, और लेना चाहिए। बहरहाल आज आप हमें क्या खिलाएंगे?
1: जी आज हम खिलाएंगे गाजर का हलवा।
0: गाजर का हलवा आमतौर पर सर्दियों में ही खाया जाता है
1: जी।
0: क्योंकि सर्दियों में गाजर ज्यादा उपलब्ध रहती हैं और सस्ती रहती हैं।
1: और ये बहुत पौष्टिक भी होते हैं।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: देखिए गाजर का हलवा बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए वो कुछ इस तरह से है। गाजर आप 1 किलो लीजिए, चीनी 250 ग्राम, खोया 250 ग्राम, दूध आप 1 कप लीजिए, देसी घी 1 टेबलस्पून, किशमिश 1 टेबलस्पून, काजू 10-15 ग्राम कटे हुए लीजिए, नारियल 1 टेबलस्पून कद्दूकस किया हुआ, या आप कटा हुआ भी ले सकते हैं, छोटी इलायची 5-6 पीसी हुई लीजिए। ये थी सामग्री। अब विधि कुछ इस तरह से है। सबसे पहले गाजर का हलवा बनाने के लिए गाजरों को धोकर छील लें तथा इसे इन्हें कद्दूकस कर लें। खोया कढ़ाई में डालकर धीमी आंच पर भून लें। भुना हुआ खोया एक प्याले में डालकर रख लें। कद्दूकस की हुई गाजर कढ़ाई में डालकर गैस पर रखें और इसमें दूध डालकर मिला लें। गाजर को नर्म होने तक पकने दें और इसमें चीनी मिलाकर थोड़ी थोड़ी देर बाद उसे हिलाते रहें। गाजर अपना रस छोड़ने लगे हर 2 मिनट के बाद उसे आप हिलाते रहें ताकि वह नीचे ना लग जाए। रस सूखने तक उसे आप अच्छी तरह पका लें। पकी गाजर में घी डालकर उसे भून लें। अब किशमिश, काजू और खोया मिला लें और 2-3 मिनट के बाद गैस बंद कर हलवे में पिसी इलायची मिला दें। हलवे को प्याले में निकाल लें तथा इसे कद्दूकस से किए हुए नारियल से सजाकर गरम गरम या ठंडा परोस सकते हैं।
0: अगली बार जब आप घर जाएंगे, घर से आएंगे, तो ये जरूर बनाइएगा और हम खाना चाहेंगे।
1: जी बिल्कुल, जरूर
0: एक
1: खिलाएंगे,
0: साथ हम खाएंगे बिल्कुल। ये तो आजकल बड़ा आप बता रहे थे ये सारी बातें और हमारे मुंह में पानी आने लगा था जी।
1: जी जी, आपका स्वाद अगली बार चेंज हो जाएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए गाजर का हलवा मैंने बहुत पहले आपसे कहा था कि हमारे किसी लिसनर ने हमें बताया था खत के लिए शुक्रिया प्रोग्राम में कि गाजर का हलवा कैसे बनाते हैं, इस पर आप चर्चा जरूर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: लेकिन जाते जाते खूबसूरत सा गाना।
0: बिल्कुल जी, गाना मैंने तैयार रखा है जी। गाना हम आपको सुनाते हैं और मुझे आप इजाजत दीजिए।

0: आपने ट्यून इन किया है एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह, जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं, बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हम सफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई, और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी। अंबाला के शब्दों में बात करते हैं नाम और नींव। अंबाला कहां से आया? सबसे पहले बात उस सवाल की जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से? इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अंबा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था, और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अंबा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमू के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था, और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंबाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं, और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अंबालावासी को गर्व है।

0: 1857, वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में उगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर के सी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें एक 63.5 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी, अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाएगी।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरें, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है, जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की, जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ। अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हों तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

0: अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की विरासत, जो आज भी जीवित है। अंबाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं, बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अंबाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है। और भगवान वामन का एक मंदिर भी है, जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी, और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अंबाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहाँ तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहाँ खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार

0: श्रोताओ, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। ये उद्योग हर साल लगभग 3000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक। 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक, ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी, दूजी और भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है, वहां लहर का संगीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूँ विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर हमेशा है आपका हमसफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

सुनिए और सुनाइए रेडियो विविधता, सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

सुनिए बप्पी लाहिरी के दिल छूने वाले गीत हमारे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। उनकी आवाज और संगीत आपको ले जाएंगे पुराने सुनहरे दिनों की यादों में, और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत के सफर का।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: तो रुकती नहीं, धड़कता है दिल तो थकता नहीं, बस इतनी सी देखभाल मांगता है, वरना ये किसी को कुछ कहता नहीं। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। विदस्ता की तरह जिंदगी भी बहती रहती है और उस बहाव को चलाने वाली धारा है हमारा दिल। आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। और विश्व हृदय दिवस पर आज हमारी बात सिर्फ और सिर्फ आपके दिल के नाम। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोली और इस कार्यक्रम में आज मेरा साथ देंगे।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। नदी में पानी साफ और बहाव खुला रहे तो किनारे हरे भरे रहते हैं, ठीक वैसे ही दिल में खून का भाव सही रहे तो पूरा शरीर खिला रहता है। हमारा दिल दिन भर में लगभग 1,00,000 बार धड़कता है बिना किसी छुट्टी के।
0: जी हां श्रोताओं, आज हम बात करेंगे दिल की और कोशिश करेंगे कि आपको वो सारी जानकारी देंगे जो आपके लिए बहुत जरूरी है और साथ में रेडियो विदस्ता की जिम्मेदारी भी। हम चाहते हैं कि अम्बाला के सभी श्रोताओं का और जितने भी हमारे श्रोता है वो स्वस्थ रहे, खास करके अपने दिल की देखरेख करें और उसका ख्याल रखें। कुछ बिंदु हम आपके सामने रखेंगे। जब हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारा दिल भी आहिस्ता आहिस्ता उसकी उम्र भी बढ़ जाती है, तो बहुत सारे बिंदु हम आपके लिए लाए हैं, तो बने रहिए हमारे साथ FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता के साथ। हमारी उम्र के बढ़ने के साथ साथ दिल की उम्र भी बढ़ती है। 25 की उम्र के बाद हर 10 साल में ऐसे बदलता है दिल। 20 से 25 की उम्र में दिल सर्वाधिक युवा होता है। इसके बाद हर 10 साल के प्रभाव दिल पर साफ दिखने लगते हैं। दिल सिर्फ धड़कता नहीं, उम्र के साथ बदलता भी है। 25 की उम्र के बाद दिल और उसकी सेहत में होने वाले बदलावों को समझिए। जानिए उन खोजों को जिन्होंने हृदय रोगों के इलाज में बड़े बदलाव किए हैं। ये सारी जानकारी जो हम आप तक ला रहे हैं, इसको तैयार किया है डॉक्टर अश्विन मेहता ने, जो डायरेक्टर हार्ट फेलियर प्रोग्राम सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में है। 30 से 40 की उम्र 5 से 10% तक कम हो सकती है ब्लड पंप करने की क्षमता। अधिकतम हार्ट रेट और व्यायाम के दौरान दिल की पंपिंग क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। दिल की ब्लड पंप करने की अधिकतम क्षमता 5 से 10% कम हो सकती है। ध्यान रखें, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर और कमर एवं हिप्स के अनुपात की जानकारी जरूर रखें। परिवार में दिल से संबंधित समस्या रही है तो जरूर पता करें।
1: 40 से 50 साल दिल की मांसपेशियों और आर्टरीज में बढ़ने लगती है शक्ति। दिल की मांसपेशियां कुछ मोटी व कम लचीली हो सकती हैं। बड़ी धमनियों की लोच घटने लगती है। रक्त को आगे ले जाने के लिए दिल को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। ध्यान रखें, इस उम्र में वजन पर नजर रखनी चाहिए क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है। खराटों को नजरअंदाज ना करें, इनका इलाज कराएं।
0: 50 से 60 साल दिल तक ऑक्सीजन पहुंचाने की कोरोनरी आर्टरीज की क्षमता घटने लगती है। दिल की धमनियों की अंदरूनी परत की वो क्षमता जिसके जरिए वो जरूरत के अनुसार रक्त प्रवाह को नियंत्रित करती है घटने लगती है। ध्यान रखें, सप्ताह में 2 दिन स्क्वैट्स, वेट ट्रेनिंग या अन्य ऐसी ही एक्सरसाइज करें। ये मांसपेशियों का लचीलापन बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है।
1: 60 से 70 साल दिल की रिजर्व क्षमता कम हो जाती है। शरीर की मांग पर शक्ति नहीं बढ़ा पाता। जरूरत पड़ने पर कार्य क्षमता बढ़ा लेने की दिल की ताकत कम होने लगती है। तेज चलना, सीढ़ियां चढ़ना, लंबे समय तक व्यायाम करने पर जल्द थकान महसूस हो सकती है। ध्यान रखें, लेटने पर सांस फूले या पैरों टखनों में नई सूजन दिखे तो दिल की जांच कराएं। दिल की धमनियों का कैल्शियम स्कोर जरूर चेक करवाएं।
0: हमारे जीवन के 250 मिनट क्यों जरूरी है? 2024 के एक शोध के अनुसार यदि सप्ताह में 250 मिनट यानी करीब 4 घंटे मध्यम से तेज गति की शारीरिक एक्टिविटी की जाए तो दिल को सर्वाधिक फायदा होता है। ये शोध ब्रिटेन में 76,074 लोगों पर किया गया था। तो याद रखें, सप्ताह में 4 घंटे मध्यम से तेज गति की शारीरिक एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए।

0: आइए आपको बताते हैं दिल को सेहतमंद रखने का फार्मूला। ये पांच बातें बहुत काम की है। रोज कुछ मिनट तेज चलिए या दौड़िए। रोजाना 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक दिल की बीमारियों का खतरा कम कर सकती है।
1: अपने दिन भर के भोजन में आधी मात्रा कई तरह की सब्जियों और फलों की रखें। इससे आपका दिल मजबूत बनता है।
0: व्यायाम की आदत बनाएं। सप्ताह में 1 घंटे वेटलिफ्टिंग हार्ट स्ट्रोक का खतरा 40-50% तक कम कर सकती है।
1: ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर की नियमित जांच कराएं। इससे समय पर दिल से जुड़े जोखिमों का पता चलता रहेगा।
0: और आखिरी, हर स्थिति में पर्याप्त नींद लें। रोजाना 7-9 घंटे की नींद आपके दिल और दिमाग की सेहत के लिए बेहद

0: आपको बताते हैं हेल्दी हार्ट के कुछ टिप्स। दिल की सेहत के 3 संकेत और 1 जरूरी बचाव। नंबर 1, मसूड़ों की बीमारी से धमनियों में प्लाक जमने, हार्ट अटैक और स्ट्रोक तक का खतरा बढ़ जाता है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की शोध के अनुसार।
1: दूसरा, हाथों की मजबूत पकड़ भी दिल की सेहत का जबरदस्त संकेत हो सकता है। लैसेट के अनुसार यह दिल की सेहत का बीपी से सटीक प्रमाण है।
0: तीसरा, सामाजिक अलगाव और अकेलापन से हार्ट अटैक, स्ट्रोक या मौत का खतरा 30% तक बढ़ जाता है, हार्वर्ड हेल्थ द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार।
1: चौथा, फ्लू वैक्सीन लगवाने से हार्ट अटैक का खतरा 28%, मिनी स्ट्रोक का 47% और कार्डियक अरेस्ट का खतरा 85% तक कम होता है, वेब एमडी और हार्वर्ड की रिसर्च के अनुसार।

0: जब दिल कहे कि कुछ ठीक नहीं तो उसकी आवाज को टालिए नहीं। अगर सीने में दर्द या भारीपन, सांस फूलना, दर्द का कंधे या जबड़े तक जाना महसूस हो तो एक पल भी मत गंवाइए। फौरन 108 एम्बुलेंस या 112 पर कॉल कीजिए और अस्पताल पहुंचिए। सही वक्त पर पहुंचना ही जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन सकता है।
1: दिल सलामत तो हर सफर आसान, दिल की हिफाजत ही असली पहचान। तो दोस्तों, आज अपने दिल से एक वादा कीजिए और अपनों से भी करवाइए। ये संदेश अपने परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों तक जरूर पहुंचाइए।
0: जी हां श्रोताओं, इस साल के विश्व हृदय दिवस पर ये जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। ये केवल एक ही दिन के लिए नहीं है, ये पूरी जिंदगी के लिए है, ताकि हम अपने सेहत को अच्छा रखें, सुचारू रूप से अपनी जिंदगी को जिए और अपने दिल का ख्याल रखें, क्योंकि दिल हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो जीवन भर बिना रुके रक्त पंप करता रहता है। दिल है तो सारी दुनिया है। इन्हीं शब्दों और इन्हीं भावनाओं के साथ अब हम आपसे लेते हैं आज्ञा। आप सुनते रहिए रेडियो विदस्ता FM 90.0 MHz। बहते रहिए, धड़कते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और अब मुझे भी दीजिए आज्ञा, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।
2: सुनिए लता मंगेशकर और नितिन मुकेश के सुरों की सौगात, जो हर बार छू जाते हैं दिल के जज्बात। इनके आवाजों में है एक अलग ही असर, जो बना देती है हर पल को हसीन और बेहतर। तो आइए सुनते हैं नितिन मुकेश और लता मंगेशकर जी के दिल छूने वाले नगमे हमारे FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर, और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत के सफर का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

सुनिए और सुनाइए रेडियो विविधता, सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

0: आपने ट्यून इन किया है एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का आपके जीवन का प्रवाह जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं बल्कि अपने ही शहर की गलियों में अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हम सफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी अंबाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अंबाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से। इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अंबा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अंबा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमू के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंबाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अंबालावासी को गर्व है।

0: 1857, वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में उगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर केसी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें एक 63.5 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाएगी।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरें, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ। अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हों तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

0: अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की, विरासत जो आज भी जीवित है। अम्बाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अम्बाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है, और भगवान वामन का एक मंदिर भी है जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी, और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अम्बाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहाँ तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहाँ खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार रहती हैं।

0: श्रोताओं, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। यह उद्योग हर साल लगभग 3,000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक। 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक, ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी दूजी और भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है वहां लहर का संगीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूं विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर हमेशा है आपका हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का अ कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

دويتشو بوزان نمت اشاريا صفر راديو بتستا هم صفر زندگي هند

0: आपने ट्यून इन किया है सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। आज हम आपके साथ एक संवेदनशील विषय पर बात करना चाहेंगे जो हम सबके लिए बहुत ही जरूरी है। ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं हरियाणा के सभी सामुदायिक रेडियो के माध्यम से, गाँव वासियों के लिए, सरपंचों के लिए, सभी हरियाणा वासियों के लिए। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए और अपने आसपास के वातावरण को बचा के रखिए।
1: एक छोटी सी जिम्मेदारी सबको बचा।
0: हरियाणा में खुले पड़े बोरवेल एक गंभीर और जानलेवा समस्या बन चुकी है। आए दिन मासूम बच्चे खेलते खेलते इन गहरे गड्ढों में गिर जाते हैं, जिससे न केवल उस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है बल्कि पूरे प्रशासनिक अमले की सांसें अटक जाती है। खेतों में बोरवेल को खुला छोड़ना एक प्रशासनिक लापरवाही ही नहीं है बल्कि एक गंभीर अपराध है। सुरक्षा सर्वोपरि। हरियाणा में खुले बोरवेल का खतरा और कानूनी परिणाम। खेतों में सिंचाई के लिए बोरवेल खोदना किसानों की जरूरत है, लेकिन काम पूरा होने के बाद या बोरवेल के असफल होने पर उसे खुला छोड़ देना साक्षात मौत को दावत देने जैसा है। हरियाणा के विभिन्न जिलों से ऐसे कई दर्दनाक घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जहां मासूमों को इन अंधेरे कुओं से निकालने के लिए सेना और NDRF को घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ता है। बोरवेल को बंद रखना क्यों जरूरी है, कुछ बिंदु आपके सामने रखता हूँ। पहला, मासूमों की सुरक्षा। खुले बोरवेल सबसे बड़ा खतरा बच्चों और मवेशियों यानी पशुओं के लिए होते हैं। खेल कूद के दौरान या घास चरते समय इनमें गिरने का जोखिम हमेशा बना रहता है। दूसरा, मानवीय और आर्थिक नुकसान। एक हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में लाखों रुपए और प्रशासनिक ऊर्जा खर्च होती है। सबसे बढ़कर कई बार घंटों की मशक्कत के बाद भी बच्चों की जान नहीं बचाई जा सकती है, जो कि एक कभी ना भरने वाला घाव है। तीसरा, सतर्कता ही बचाव है। बोरवेल का काम खत्म होते ही उससे लोहे के मजबूत ढक्कन यानी कैप से ढकना, चारों तरफ कंक्रीट से पक्का करना और कटीली तारों की फेंसिंग करना बेहद जरूरी है। कानूनी प्रावधान और सख्त दंड। माननीय सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद हरियाणा सरकार और पुलिस प्रशासन ने खुले बोरवेल छोड़ने वालों के खिलाफ कड़े रुख अपनाए हैं। अगर कोई अपने खेत या प्लॉट में बोरवेल खुला छोड़ता है तो उसके खिलाफ निम्नलिखित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। भारतीय न्याय संहिता BNS की धाराएं, जो पहले IPS के नाम से हम जानते थे। पहला, लापरवाही से जान जोखिम में डालना। खुले बोरवेल के कारण किसी की जान को खतरा पैदा करने पर लापरवाही का मामला दर्ज होता है। दूसरा, गैर इरादतन हत्या का मामला। यदि खुले बोरवेल में गिरने से किसी बच्चे या व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जमीन के मालिक और बोरवेल खोदने वाली एजेंसी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या यानी कल्पेबल होमिसाइड के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। इसमें दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल और भारी जुर्माना हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार बोरवेल खोदने से कम 15 दिन पहले जिला प्रशासन यानी DC या सरपंच को लिखित सूचना देना अनिवार्य है। नियम तोड़ने पर बोरवेल को तुरंत सील कर दिया जाता है। जमीन मालिक पर भारी प्रशासनिक जुर्माना लगाया जाता है। हादसे की स्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन यानी बचाव कार्य का पूरा खर्च भी दोषी जमीन मालिक से वसूला जा सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे कर्तव्य की। एक छोटी सी लापरवाही एक जिंदगी का अंत कर सकती है। यदि आपके आसपास या खेत में कोई ऐसा बोरवेल है जो इस्तेमाल में नहीं है तो उसे तुरंत मिट्टी, मलबे या कंक्रीट से ऊपर तक भर दें। अगर कोई मकान या जमीन मालिक कहने पर भी बोरवेल बंद नहीं करता है तो इसकी सूचना तुरंत अपने गांव के सरपंच, स्थानीय पुलिस या जिला प्रशासन को दें। सजग रहें और किसी मासूम की जान बचाने में अपना योगदान दे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: और मत छोड़ो, हर घर तक हर गांव तक आए।
1: मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, सुनते रहिए दिल से।

0: तो रुकती नहीं, धड़कता है दिल तो थकता नहीं, बस इतनी सी देखभाल मांगता है, वरना ये किसी को कुछ कहता नहीं। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। विदस्ता की तरह जिंदगी भी बहती रहती है और उस बहाव को चलाने वाली धारा है हमारा दिल। आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, हम सफर जिंदगी का आपके जीवन का प्रवाह। और विश्व हृदय दिवस पर आज हमारी बात सिर्फ और सिर्फ आपके दिल के नाम। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोली और इस कार्यक्रम में आज मेरा साथ देंगे।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। नदी में पानी साफ और बहाव खुला रहे तो किनारे हरे भरे रहते हैं, ठीक वैसे ही दिल में खून का भाव सही रहे तो पूरा शरीर खिला रहता है। हमारा दिल दिन भर में लगभग 1,00,000 बार धड़कता है बिना किसी छुट्टी के।
0: जी हां श्रोताओ, आज हम बात करेंगे दिल की और कोशिश करेंगे कि आपको वो सारी जानकारी देंगे जो आपके लिए बहुत जरूरी है और साथ में रेडियो विदस्ता की जिम्मेदारी भी। हम चाहते हैं कि अंबाला के सभी श्रोताओं का और जितने भी हमारे श्रोता है वो स्वस्थ रहे, खास करके अपने दिल की देखरेख करें और उसका ख्याल रखें। कुछ बिंदु हम आपके सामने रखेंगे। जब हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारा दिल भी आहिस्ता आहिस्ता उसकी उम्र भी बढ़ जाती है, तो बहुत सारे बिंदु हम आपके लिए लाए हैं, तो बने रहिए हमारे साथ FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता के साथ। हमारी उम्र के बढ़ने के साथ साथ दिल की उम्र भी बढ़ती है। 25 की उम्र के बाद हर 10 साल में ऐसे बदलता है दिल। 20 से 25 की उम्र में दिल सर्वाधिक युवा होता है। इसके बाद हर 10 साल के प्रभाव दिल पर साफ दिखने लगते हैं। दिल सिर्फ धड़कता नहीं, उम्र के साथ बदलता भी है। 25 की उम्र के बाद दिल और उसकी सेहत में होने वाले बदलावों को समझिए। जानिए उन खोजों को जिन्होंने हृदय रोगों के इलाज में बड़े बदलाव किए हैं। ये सारी जानकारी जो हम आप तक ला रहे हैं, इसको तैयार किया है डॉक्टर अश्विन मेहता ने, जो डायरेक्टर हार्ट फेलियर प्रोग्राम सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में है। 30 से 40 की उम्र 5 से 10% तक कम हो सकती है ब्लड पंप करने की क्षमता। अधिकतम हार्ट रेट और व्यायाम के दौरान दिल की पंपिंग क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। दिल की ब्लड पंप करने की अधिकतम क्षमता 5 से 10% कम हो सकती है। ध्यान रखें, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर और कमर एवं हिप्स के अनुपात की जानकारी जरूर रखें। परिवार में दिल से संबंधित समस्या रही है तो जरूर पता करें।
1: 40 से 50 साल दिल की मांसपेशियों और आर्टरीज में बढ़ने लगती है शक्ति। दिल की मांसपेशियां कुछ मोटी व कम लचीली हो सकती हैं। बड़ी धमनियों की लोच घटने लगती है। रक्त को आगे ले जाने के लिए दिल को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। ध्यान रखें, इस उम्र में वजन पर नजर रखनी चाहिए क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है। खराटों को नजरअंदाज ना करें, इनका इलाज कराएं।
0: 50 से 60 साल दिल तक ऑक्सीजन पहुंचाने की कॉरोनरी आर्टरीज की क्षमता घटने लगती है। दिल की धमनियों की अंदरूनी परत की वो क्षमता जिसके जरिए वो जरूरत के अनुसार रक्त प्रवाह को नियंत्रित करती है घटने लगती है। ध्यान रखें, सप्ताह में 2 दिन स्क्वैट्स, वेट ट्रेनिंग या अन्य ऐसी ही एक्सरसाइज करें। ये मांसपेशियों का लचीलापन बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है।
1: 60 से 70 साल दिल की रिजर्व क्षमता कम हो जाती है। शरीर की मांग पर शक्ति नहीं बढ़ा पाता। जरूरत पड़ने पर कार्य क्षमता बढ़ा लेने की दिल की ताकत कम होने लगती है। तेज चलना, सीढ़ियां चढ़ना, लंबे समय तक व्यायाम करने पर जल्द थकान महसूस हो सकती है। ध्यान रखें, लेटने पर सांस फूले या पैरों टखनों में नई सूजन दिखे तो दिल की जांच कराएं। दिल की धमनियों का कैल्शियम स्कोर जरूर चेक करवाएं।
0: हमारे जीवन के 250 मिनट क्यों जरूरी है? 2024 के एक शोध के अनुसार यदि सप्ताह में 250 मिनट यानी करीब 4 घंटे मध्यम से तेज गति की शारीरिक एक्टिविटी की जाए तो दिल को सर्वाधिक फायदा होता है। ये शोध ब्रिटेन में 76,074 लोगों पर किया गया था। तो याद रखें, सप्ताह में 4 घंटे मध्यम से तेज गति की शारीरिक एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए।

0: आइए आपको बताते हैं दिल को सेहतमंद रखने का फार्मूला। ये पांच बातें बहुत काम की है। रोज कुछ मिनट तेज चलिए या दौड़िए। रोजाना 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक दिल की बीमारियों का खतरा कम कर सकती है।
1: अपने दिन भर के भोजन में आधी मात्रा कई तरह की सब्जियों और फलों की रखें। इससे आपका दिल मजबूत बनता है।
0: व्यायाम की आदत बनाएं। सप्ताह में 1 घंटे वेटलिफ्टिंग हार्ट स्ट्रोक का खतरा 40-50% तक कम कर सकती है।
1: ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर की नियमित जांच कराएं। इससे समय पर दिल से जुड़े जोखिमों का पता चलता रहेगा।
0: और आखिरी, हर स्थिति में पर्याप्त नींद लें। रोजाना 7-9 घंटे की नींद आपके दिल और दिमाग की सेहत के लिए बेहद

0: आपको बताते हैं हेल्दी हार्ट के कुछ टिप्स, दिल की सेहत के 3 संकेत और 1 जरूरी बचाव। नंबर 1, मसूड़ों की बीमारी से धमनियों में प्लाक जमने, हार्ट अटैक और स्ट्रोक तक का खतरा बढ़ जाता है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की शोध के अनुसार।
1: दूसरा, हाथों की मजबूत पकड़ भी दिल की सेहत का जबरदस्त संकेत हो सकता है। लैसेट के अनुसार यह दिल की सेहत का बीपी से सटीक प्रमाण है।
0: तीसरा, सामाजिक अलगाव और अकेलापन से हार्ट अटैक, स्ट्रोक या मौत का खतरा 30% तक बढ़ जाता है, हार्वर्ड हेल्थ द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार।
1: चौथा, फ्लू वैक्सीन लगवाने से हार्ट अटैक का खतरा 28%, मिनी स्ट्रोक का 47% और कार्डियक अरेस्ट का खतरा 85% तक कम होता है, वेब एमडी और हार्वर्ड की रिसर्च के अनुसार।

0: जब दिल कहे कि कुछ ठीक नहीं तो उसकी आवाज को टालिए नहीं। अगर सीने में दर्द या भारीपन, सांस फूलना, दर्द का कंधे या जबड़े तक जाना महसूस हो तो एक पल भी मत गंवाइए। फौरन 108 एम्बुलेंस या 112 पर कॉल कीजिए और अस्पताल पहुंचिए। सही वक्त पर पहुंचना ही जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन सकता है।
1: दिल सलामत तो हर सफर आसान, दिल की हिफाजत ही असली पहचान। तो दोस्तों, आज अपने दिल से एक वादा कीजिए और अपनों से भी करवाइए। ये संदेश अपने परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों तक जरूर पहुंचाइए।
0: जी हां श्रोताओं, इस साल के विश्व हृदय दिवस पर ये जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। ये केवल एक ही दिन के लिए नहीं है, ये पूरी जिंदगी के लिए है, ताकि हम अपने सेहत को अच्छा रखें, सुचारू रूप से अपनी जिंदगी को जिए और अपने दिल का ख्याल रखें। क्योंकि दिल हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जो जीवन भर बिना रुके रक्त पंप करता रहता है। दिल है तो सारी दुनिया है। इन्हीं शब्दों और इन्हीं भावनाओं के साथ अब हम आपसे लेते हैं आज्ञा। आप सुनते रहिए रेडियो विदस्ता FM 90.0 MHz। बहते रहिए, धड़कते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और अब मुझे भी दीजिए आज्ञा, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

0: थी ताजमहल, एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

पेश है कार्यक्रम इनसे मिलिए। आज के मेहमान हैं अभिजीत शर्मा, प्रस्तुत करेंगे भरत सपोरी।

पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो

0: अभिजीत, आप ये बताइए कि इस छोटी सी उम्र में जब आपने गाना गाना शुरू कर दिया, क्या समझ आया आपको संगीत और गायन के बारे में? इस छोटी सी उम्र में आपके माता-पिता ने इस हुनर को कैसे देखा?
1: अंकल, जब मैंने स्टार्ट करा था गाना तो मैं 7 साल का था। मतलब जब सीखना शुरू करा तो पता ऐसे लगा कि जो मेरे टॉडलर्स में जो म्यूज़िक टीचर थे, तो एक बार क्या हुआ कि मेरे दोस्त हैं जितने छोटे छोटे जब दोस्त होते थे, तो वो मुझे लेकर गए कि मैम इसका गाना सुनो। तो वहाँ पर सबसे पहले मैंने उन्हें शायद वो गाना सुनाया था, तुम ही हो। तो फिर उसके बाद उन्होंने सुना तो वो बार बार मुझे बुलाते रहते थे कि आप तू गाना सुनाओ मुझे वो वाला। तो मतलब लाइक उस टाइम मेरा वो सिग्नेचर सॉन्ग कहते थे। अभी भी मतलब बच्चों को याद है कि तू वो गाना सुनाता था। तो शिल्पा मैम थे, तो शिल्पा मैम ने फिर पापा मम्मा को कहा कि आप इसे ज़रूर सिखाइए। तो ऐसे पापा गाते हैं, भैया गाते हैं, सब गाते थे घर में तब। तो उसी टाइम फिर उन्होंने जब रीच आउट करा तो पापा मम्मा ने देखा कि हाँ ये गाता भी है। तो उसके बाद फिर मैंने सीखना शुरू करा धीरे धीरे। तो फिर ऐसे ही पता चल गया, टीचर्स ने मतलब सबसे पहले तो शिल्पा मैम ने बताया था कि आप इसे सिखाइए ज़रूर, ये कुछ ना कुछ कर सकता है आगे जाकर।
0: तो शिल्पा मैम को आप आज भी याद करते हैं क्योंकि उन्होंने आपके इस संगीत के सफर में एक नींव रखी, मैं तो यही
1: जी
0: मानता हूँ। तो उनके लिए कुछ गुनगुनाइए और वही गाना जो आपसे बार बार सुनते थे।

0: जी शिल्पा मैम, अगर आप ये कार्यक्रम सुन रही हैं तो ये अभिजीत ने आपके लिए ये डेडिकेट किया, क्योंकि टीचर जो हमारी होती है या हमारा होता है, वही हमें सही रास्ता दिखा देता है या दिखा देती है। जैसे आपने, अभिजीत ने कहा कि इनके पेरेंट्स से बात की कि इनको आप संगीत सिखा दीजिए, और आपने बहुत बड़ा काम किया है जिससे आने वाले दिनों में हमारे देश को अभिजीत जैसा सिंगर मिलेगा। अभिजीत, आगे चलते हैं। अभी आप किस क्लास में पढ़ते हैं? आपको हमने कई बार अंबाला में स्टेज पर गाते देखा है, कैराओके पर भी, ऑर्केस्ट्रा के साथ भी। कैसे समन्वय इन दोनों में आप करते हैं?
1: अंकल, मैं अभी 10th क्लास में पढ़ता हूँ। एंड कैरियोके और लाइक जैसे म्यूजिक होता है, लाइव म्यूजिक, तो कैरियोके का ये है, एक तो लाइक पूरा उसमें एक्यूरेसी अपनी एकदम बंद के चलना पड़ता है उससे। आप बिल्कुल खुला नहीं गा सकते, कोई आपको अगर अलग से अपनी हरकतें लेनी है, मुर्कियाँ लेनी है, तो आप वो नहीं कर सकते। एंड ऊपर से कैरियोके मतलब ठीक है, एज अ प्रैक्टिस मटेरियल मुझे बहुत पसंद है, पर लाइव म्यूजिक में ये है, अगर आपने कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे छोटे मोटे, वैसे तो ये गाने ही आजकल के जैसे पुराने टाइम के रफ़ी जी के गाने हैं, तो उनमें तो चेंजेस करना बस क्या ही कर सकते हैं, वो तो पहले ही 5 महीने 4 महीने लग के पूरा स्कूल है एक गाना। पर जैसे कोई अलग गाना है और आप वो ऑर्केस्ट्रा में अगर आपने ज़रा सी भी मुर्की ली, तो एटलीस्ट उसमें म्यूज़िक का आप थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। हालांकि अब तो म्यूजिशियंस हमारे अम्बाला कैंट के एंड हर जगह के म्यूजिशियंस इतने एक्यूरेसी से बजाते हैं कि कैरियोके से कुछ कम नहीं है उसमें। पर बस ये है कि आप लाइव म्यूजिक में थोड़ा कहते हैं ना कि अपने आप को दिखा सकते हैं, जितना अगर जितने आपने सीख लिया है तो वो आप अपने लाइव म्यूजिक में दिखा सकते हैं। कैरियोके एज अ प्रैक्टिस मटीरियल मुझे बहुत अच्छा लगा, तो कैरियोके पे वैसे अगर हम देखा जाए तो मुझे लाइव म्यूजिक पर्सनली बहुत ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि एक फील एंड ऑरा ही अलग होता है लाइव म्यूजिक का, तो ऐसे ऐसे कोप हो जाता है साथ में।
0: मुझे यहाँ पे एक चीज़ ये ख्याल आता है, आपने ये कहा कि लाइव म्यूजिक में आपको अगर अपने तरह की कोई चेंज लेनी है या कोई मुर्की लेनी है उसमें, तो क्या आप उस बैंड को पहले एडवांस में कहते हैं या वो इंस्टेंटली बैंड भी आपके गायन को समझ लेता है?
1: अंकल, मुर्कियाँ तो एक ऐसी चीज़ है, वो सिर्फ ताल के साथ हम ले सकते हैं, तो वो तो ताल में हम ऐसे इंस्टेंटली ले सकते हैं। जैसे आपने कुछ थोड़ा ज़्यादा चेंज करना है, कभी कभी जैसे सिंगर्स हैं वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि थोड़ा सा कि मैंने अपना कुछ ये अलग से लाइन लगानी है या थोड़ा मुझे आलाप लेना है बीच में, तो वो हम उन्हें ऐसे प्रैक्टिस होती है रिहर्सल, तो उसमें बता सकते हैं कि मैं इधर आलाप लूंगा सर। तो ऐसे जैसे एक बार मैं एक स्टेज पर गया था, तो मैंने अंतरे से गाना उठाना था, तो मैंने उन्हें पहले ही बता दिया कि सर मैं अंतरे से उठाना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है आप अंतरे से उठाना। तो ऐसे होता है।
0: तो आप हमें कोई ऐसी कोई गाना या कोई अंतरा हमें सुना सकते हैं जिसमें आपने अपने तरीके से कोई चेंज किया या मुर्की लिया या कोई बदलाव किया?
1: जी जरूर सुना सकता हूँ।

0: संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं।
1: बहुत खूब अभिजीत, मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ इस समय इस स्टूडियो में, अम्बाला कैंट के स्टूडियो में हमारे अम्बाला कैंट की ही शान अभिजीत हैं। और अभी आपका जो संगीत का सफर है वो अभी शुरू ही हुआ है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सुर और ताल को आप कैसे हमारे श्रोताओं को समझा सकते हो?
0: अंकल, सुर होता है जैसे एक, जैसे सारे का मापा है
1: जी,
0: तो उनमें ही अगर हम इंग्लिश में चलें तो सी मेजर, सी शार्प मेजर, डी मेजर, तो ऐसे ही पर्टिकुलर गानों के स्केल होते हैं। कोई गाना है जैसे जब कभी भी, तो ये सारे गा मा पा यहाँ से उठता है। तो अगर उसी गाने को हम थोड़ा किसी और सुर से उठा दें पर बज वो उस सुर पे रहे, तो उसे हम कहते हैं, जैसे कहते हैं ना किसी को कि ये बेसुरा हो गया, तो उसे हम ये कहते हैं। सुर पे वो होता है कि हम जिस सुर पे वो बज रहा है, लाइक हारमोनियम के सारे गा मा पा, जिस टोन में वो बज रहा है उस, तो उसे सुर कहते हैं। एंड ताल तो एक पर्टिकुलर बीट होती है, जैसे हमारी तीन ताल है, झप ताल है, मत ताल, कहरवा, रूपक ताल, दीप चंदी ताल। तो जैसे ताल एक बहुत ही कंफ्यूजिंग पर बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। जैसे अब तीन ताल है, या चलिए कहरवा लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये अभी मिड टोन पे बज रही है, अब 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, धा दी दी धा धा, ऐसे बज सकती है। एंड मतलब एक ही ताल पर वो है एक ही, बट वो तेज उसका दुगुन हो सकता है, चौगुन हो सकता है, या फिर वो आधी हो सकती है। अति विलंबित जैसे होता है तो हम वो खुला गाते हैं। तो ताल इज जस्ट सम नंबर्स, उनकी एक पर्टिकुलर हमने बीट बना दी है। बोल होते हैं तबले के, जैसे धागे नाती नाके दीना, तो उनमें वो चलती रहती है, तो दैट इज ताल। एंड कंफ्यूजिंग कह सकते हैं शुरू में, जैसे कुछ तालें होती है, दीप चंदी, रूपक, 14 मात्रा है, 7 मात्रा है, मत ताल है, तो वो लगती है। पर एक बार अगर आपके मन में वो बैठ जाए तो उसके बाद तो आप कुछ भी कर सकते हैं उस ताल में, अपनी आलाप ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं।
1: जब आप सीखने जाते हो, जब आप पढ़ रहे हो, होते हो ये, तो उस समय क्या आपका फोकस 100% उधर ही की तरफ होता है, तभी जाके हम इस चीज को समझ सकते हैं जैसे आपने अभी हमें समझाया ताल के बारे में?
0: हाँ जी, 100% फोकस तो किसी भी चीज को करना है तो पूरा फोकस इस पे लगाना पड़ता है एक बार के लिए। एक बार समझ आ जाती है उसके बाद आप आराम से चलती रहती है, वो धीरे जब सुनेंगे तो खुद आ जाएगी। शुरू में जब कोई नई चीज सीखनी होती है, जैसे रिसेंटली मैंने एक गाना सीखा मत ताल में, गुलाम अली जी का और कविता कृष्णमूर्ति जी की, वो गज़ल है, तो वो मत ताल में है, 9 मात्रा, तो उसे सीखने में काफ़ी मुझे टाइम लगा पूरा, लाइक मैंने दिन ही सुनता रहा। बट एक बार जब समझ आती है तो उसके बाद धीरे धीरे हो जाता है।
1: तो इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है, क्या उसकी एक झलक हो जाए?
0: हाँ जी, जरूर।

0: दे।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, और आज आप सुन रहे हैं कार्यक्रम इनसे मिलिए। आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित है अभिजीत शर्मा, जो एक सुप्रसिद्ध गायक बनने वाले हैं। आइए अभिजीत से बातों का सिलसिला जारी रखते हैं। आज हम उनसे उनके जिंदगी के बारे में सुनेंगे और साथ साथ में उनके कंठ से हम अच्छे अच्छे गाने भी सुनेंगे। अभिजीत, वैसे तो आपका बचपन ही अभी चल रहा है, ये बताइए बचपन में आपके पसंदीदा खिलौने क्या होते थे और क्या क्या शरारतें आप घर में करते थे?
2: बचपन में अंकल, एक तो आर्मी, जब से ये मैंने उरी वगैरह जितनी भी आर्मी की मूवीज हैं देखी, तब से मुझे बस एक भूत चढ़ गया था कि हाँ, मुझको बस आर्मी ऑफिसर बनना है, कि बिल्कुल मुझे वैसा करेज करना है जैसे अंधेरा होना तो मैंने अपनी गन लेके चल पड़ना कि मैं तो सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा हूँ। तो ऐसे होता है, और गन्स एंड अवेंजर्स होते हैं जैसे उनकी टॉय फिगर्स होती है, उनके साथ उन्हें सेट करके रख देना कि अब कल लड़ाई होगी, कल वॉर है। तो ऐसे ऐसे
1: जब हम किसी भी काम में आगे बढ़ते हैं, काबिल होते हैं, तो वो शरारतों में भी काबिल होता है। ऐसा तो हो नहीं सकता, कम से कम एक शरारत तो बता दीजिए जो आपने बचपन में की होगी।
2: शरारतें अंकल, मेरी जो शरारतें होती थी एक्चुअली वो बहुत लॉजिकल शरारतें होती थी। जैसे मेरे आकाश भैया की चॉकलेट पड़ी है, तो अब उन आकाश भैया का ये है कि जैसे कि अभी मैंने चॉकलेट रख दी, अब मैं इसे 3-4 दिन में आराम आराम से करके खाऊंगा।
1: ठीक
2: पर मुझे ये था कि कभी भी किसी चीज को वेस्ट नहीं करना चाहिए और कभी भी तड़पाना नहीं चाहिए, तो मैं एक ही दिन में फिर उनकी सारी चॉकलेट खा जाता था।
1: और फिर कुछ नाराजगी झेलनी पड़ती
2: नाराजगी नहीं, बस थोड़ा सा भागना पड़ता था।
1: थी? चलिए, यही हम जानना चाह रहे थे। और ये हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा होता है,
2: हाँ जी, हाँ जी,
1: जिसकी जिसके साथ हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आपने यूनिफॉर्म की बात की, आपने आर्मी की बात की, आपने देश प्रेम की बात की। देश प्रेम को आप गा के हमारे श्रोताओं को कैसे बता सकते हैं,
2: जी जरूर
1: और
2: अंकल।
1: इसके बारे में आप कुछ डिटेल भी बता दीजिए, हमारे देश में देश प्रेम को जगाना कितना जरूरी है। और मैं चाहूंगा कि जो आप गाना गाएंगे उससे भी हम लोगों तक वही बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे।
2: देश प्रेम तो अंकल हर एक आदमी में वैसे आजकल है ही, क्योंकि सबको पता है कि आज हम यहाँ बैठे हैं, आराम से अपने घरों में बैठे हैं, चल पा रहे हैं सड़कों पर, इधर स्कूल जा पा रहे हैं। अगर आर्मी ना होती तो फिर ऑब्वियसली ये सब बहुत मुश्किल होता, एंड देश काफी अब कितना सुरक्षित फील करते हैं। आर्मी का तो एक बहुत बड़ा रोल है, और आर्मी तो सबके दिल में अब बसती है, क्योंकि हमें एक छोटी सी कील लग जाए तो हम बोलते हैं कि ओहो, आज काम नहीं हो पाएगा, आज लिख नहीं पाएंगे, वो वहाँ गोली खाकर

0: वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा, ये बहुत साल पहले लिखा गया है और इसके साथ जुड़ा हुआ आज हमारे देश का जो थीम है वो है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। तो हमारी कोशिश यही है कि हम सुरक्षित यहाँ पर तभी है जब हमारे सीमाओं पर प्रहरी उस पर नजर रखे हुए हैं और हम उनको यहाँ से अपना प्यार और स्नेह भेज रहे हैं और साथ में उन शहीदों को भी नमन करते हैं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। आगे चलते हैं, अभिजीत से बात करते हैं। अभिजीत, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप अपने गुरुजन को कैसे याद करते हैं, क्या कहना चाहोगे अपने गुरुजन को FM 90.0 MHz के माध्यम से, कौन सा गाना उनके लिए आप समर्पित करोगे? अभिजीत, मैं चाहूंगा कि आप विस्तार में अपने गुरुजन के बारे में बताएं।
1: अंकल, मेरे सभी गुरुजन बहुत सपोर्टिव रहे हैं एंड सभी ने जितना भी कुछ मुझे सिखाया है बहुत प्यार से सिखाया है, चाहे थोड़ी सी ही चीज़ हो, पर जैसे अक्विंदर मैम, शिल्पा मैम, मंजू मैम, राज कमल सर एंड मेरे गुरुजी श्री संतोष कटारिया जी, सभी ने मतलब इतना प्यार दिया है कि मतलब एक जैसा होता है ना कि हाँ गुरुजी हैं, एक स्ट्रिक्टनेस होती है, तो मेरे लिए तो मैं पता नहीं लकी कह सकते हैं, पर मेरे लिए सभी गुरुजन एकदम ऐसे लाइक फ्रेंड्स की तरह हैं एंड बहुत प्यार किया है एंड जब भी मैं कोई चीज़ सीखता हूँ तो मुझे सबकी याद आती है, सर की याद आती है कि सर ने ऐसे सिखाया वैसे सिखाया कि ये मैं अब गलत कर रहा हूँ। कोई गाना मैं रिकॉर्ड करके फेसबुक पे डालता हूँ तो सबसे पहले वो सर से अप्रूव होता है, उसके बाद ही हो जाता है एंड जितने भी जैसे मेरे सर मुझे सिखाते हैं तो बिल्कुल मेरे को ऐसा कभी नहीं लगा कि हाँ अब मेरे थोड़े ऐसा मुझे स्ट्रिक्टनेस है, मुझे वो है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, मेरे सर इज़ जस्ट लाइक माई बेस्ट फ्रेंड। एंड जैसे मैंने अपनी अभी पोर्टफोलियो बनाया तो उसमें भी मेरे गुरुजी का मैंने लिखा माय गुरुजी एंड माय बेस्ट फ्रेंड, तो उन सब के लिए मैं एक गाना एंड सर के लिए स्पेशली ये गाना डेडिकेट करना चाहूँगा।

0: मैं यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगा कि गुरुजन जितने भी अपना आशीर्वाद अपने शिष्यों को देते हैं उनसे ही वो शिष्य आगे की ओर बढ़ते हैं, और खुशनसीब है वो गुरुजन जिनको अभिजीत जैसे शिष्य मिलते हैं, और साथ में अगर वो इनके दोस्त भी हैं। हम संतोष कटारिया जी के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आप हमारे देश के लिए एक ऐसे कलाकार को तैयार कर रहे हैं जो आने वाले दिनों में हमारा गौरव बनेगा।
1: तेरे जैसा यार कहां ऐसा यार ना।
0: अभिजीत के साथ हमारी बातों का सिलसिला जारी है और आज हमारी कोशिश है कि हम अभिजीत के गाने तो जरूर सुनेंगे ही, पर साथ में अभिजीत के जिंदगी के बारे में हम जानें। अभिजीत, आपके परिवार में आपके पापा भाई गाते देखे गए हैं सोशल मीडिया पर, क्या माँ भी गाती हैं?
2: जी हाँ, मम्मा भी गाते हैं।
0: क्या कहना चाहेंगे माँ के लिए? उम्मीद है कि वो ये प्रोग्राम सुन रही हो।
2: अंकल, जैसा कि सभी जानते हैं कि सबसे पहले दुनिया के जो पैदा होते ही जो सबसे पहले गुरु होते हैं और सबसे ज्यादा प्यार करने वाले लोग होते हैं माँ बाप, और अपने भाई बहन ही होते हैं। आकाश भैया जैसे, वो भी ही इज जस्ट लाइक माई गुरु, एंड पापा मम्मा तो हैं ही। तो मम्मा से तो मतलब अगर मैं बोलने पे आऊँ फिर हमारा ये प्रोग्राम जो है ख़त्म ही नहीं हो पाएगा क्योंकि पापा मम्मा भैया इनके लिए जितना मैं बोलूँ उतना ही कम है। छोटी छोटी बड़ी बड़ी किसी भी बात पर जो भी होता है सपोर्ट सबसे ज़्यादा परिवार वाले करते हैं, चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो पर परिवार वाले हमेशा आपके साथ होते हैं। मम्मा के लिए आज एक गाना ज़रूर गाना चाहूँगा, उसके बाद मैं पापा के लिए भी गाना चाहूँगा या फिर साथ में गा सकता हूँ, पर पहले मम्मा के लिए ज़रूर गाता हूँ।

0: मुझे जब माँ के लिए कुछ लिखना होता है तो मैं एक ही शब्द लिखता हूँ, माँ अनमोल। और सच में माँ अनमोल होती है। आगे चलते हैं, अभिजीत, आप का स्कूल का क्या योगदान है आपकी जिंदगी में, खास तौर पर एज ए स्टूडेंट, एज एन आर्टिस्ट, एज ए सिंगर? क्या कहना है स्कूल के दोस्तों, टीचर्स और मेंटर्स के लिए?
1: स्कूल अंकल मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। जितनी भी जैसे कोई प्रोग्राम है, छुट्टियाँ चाहिए होती है, लीव्स चाहिए होती है, तो स्कूल वाले तो आर दे आर लाइक बहुत ज़्यादा खुश कि हाँ ज़रूर जाओ। एंड जैसे अभी यूनिट टेस्ट हुआ तो मेरा एक शो था एंड कानपुर था, तो स्कूल वाले मतलब बिल्कुल हेजिटेट नहीं करते। मैंने देखा है कुछ स्कूल जैसे करते सकते हैं कि नहीं हमारे यूनिट टेस्ट हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 10th क्लास है, बट स्कूल वाले इतने कोऑपरेटिव हैं कि उन्होंने मेरा स्किप कराया एंड उसके बाद मेरा फिर से वापस दिलवा दिया। जितने भी टीचर्स हैं वो मतलब सब समझते हैं। जैसे मैंने मैम से पूछा कि मैम यूनिट टेस्ट का अब क्या करूँ मैं, मेरा तो फंक्शन है, तो मैम ने कहा कोई बात नहीं, तू टेंशन ना ले, तू जा एंड मैं तेरा यूनिट टेस्ट बाद में कराती हूँ। एंड प्रिंसिपल मैम स्पेशली, वो तो मतलब दिया इतना ज़्यादा सपोर्ट, तो मतलब कौन ही कर सकता है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। स्कूल वाले तो बहुत प्यार करते हैं एंड दोस्त, तो दोस्त आपको पता ही है अंकल, सभी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव तो होते ही हैं।
0: क्या कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो कभी खिंचाई भी करते हैं?
1: दोस्त अंकल खिंचाई मतलब किस वे में?
0: शरारत करना, और किस तरीके में शरारत करना, तंग करना, या कभी कहते हैं कि अभिषेक जरा साइड पे आ जाओ, हमें कोई गाना सुनाओ, क्या ऐसा होता है स्कूल में कभी?
1: स्कूल में तो नहीं अंकल, वैसे मैं गाना गाता रहता हूँ, इंस्टाग्राम फेसबुक है तो वहाँ पे सुन लेते हैं। स्कूल में उन्हें पता ही है गाएगा नहीं तो कोई फायदा नहीं है। बाकी दोस्त तो मेरे सब बहुत अच्छे हैं, मेरा स्पेशली जो दोस्त है आर्यन आहूजा है अभी, लाइक वो बहुत अच्छा है। एंड शतिल है, आदित्य है, अर्नोल, वो तो सारे बहुत प्यार करते हैं। जैसे कोई गाना रिकॉर्ड करा कुछ नया तो मैं उन्हें भेजता हूँ कि कैसा लग रहा है, फिर वो बताते हैं। और एक है वो तो पूरा एकदम सुन के कि यार ये तेरे तू तूने गा तो दिया बट तेरे लेवल का नहीं है, तू और अच्छा गा, मतलब उसको नॉलेज बिल्कुल नहीं है पर वो फिर भी उसको पता है कि कैसा गाता है। तो दोस्त तो बहुत अच्छे
0: यानी
1: हैं।
0: कि दोस्तों में क्रिटिक होना बहुत जरूरी है, जो आपकी कमियां हैं या आपकी गलतियां हैं उनके बारे में बता देता है।
1: हाँ जी हाँ
0: दोस्त
1: जी
0: एक्चुअल में सही वही होता है जो हमारी कमियों के बारे में बता देता है, ताकि आप अगली जो कोशिश करेंगे कि वो एक्यूरेट करें।
1: जी बिल्कुल।
0: अभिजीत, आपको 60 से ज्यादा अवार्ड से नवाजा गया है, क्या मायने रखता है आपके लिए एक अवार्ड?
1: अंकल मेरे लिए एक अवार्ड इज जस्ट लाइक एक आशीर्वाद। जितने अवार्ड्स मिलते रहते हैं मैं कभी भी उन्हें एक लाइक ऐसे ट्रॉफी के वे में नहीं लेता, हमेशा उन्हें एक ऐसे वे में लेता हूँ कि ये मुझे मोटिवेट करते हैं उन्हें देख के कि मुझे और एंड और आगे बढ़ना है। जैसे इतने लोग प्यार से, इट इज़ जस्ट अ टोकन ऑफ लव जैसे कहते ही हैं हम, कि हम आपको एक टोकन ऑफ लव देना चाहेंगे, तो बहुत अच्छा लगता है। अवार्ड्स मिलते हैं एंड बहुत प्यार मिलता है, एज अ ब्लेसिंग काउंट करता हूँ मैं एक अवार्ड को।
0: बहुत अच्छी बात है अगर आप ऐसी सोच रखते हैं कि हर दिन हमें कुछ नया करना है, हर दिन हमें आशीर्वाद चाहिए, हर दिन हमें मोटिवेशन चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी आपको बहुत कुछ आगे सीखना ज़रूरी है
1: जी
0: ताकि आप आगे की ओर बढ़ जाएं। अभिजीत, अंबाला कैंट का गौरव है आप। आप पहले रेडियो विदस्ता के फेसबुक लाइव शो में प्रस्तुति दे चुके हैं 3 साल पहले, अब उसके बाद आज आप अंबाला कैंट के पहले FM रेडियो स्टेशन पर आए हैं, आपको कैसा लग रहा है?
1: अंकल मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमारे अंबाला कैंट का एक ऐसे, हमारी अंबाला कैंट की एक पहचान और एक आवाज़ बन रही है रेडियो विदस्ता। एंड हम बहुत लोगों को अपने अंबाला कैंट के जितने भी आर्टिस्ट्स हैं, अच्छे लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं और अंबाला कैंट की शान बढ़ाते हैं, उनकी हम आवाज़ दे सकते हैं, बहुत लोगों तक पहुँचा सकते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है।
0: हमारे साथ आज प्रोग्राम में अभिजीत शर्मा जी के पिताजी श्री राजीव शर्मा जी भी मौजूद है। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन।
2: धन्यवाद भारत जी, आपने यहाँ पे हमें आमंत्रित किया, आपके आभारी रहेंगे।
0: कैसा महसूस होता है एक पिता को जब उनका सुपुत्र बहुत सारे एक समूह पर अपनी प्रस्तुति देता है गायन के रूप में?
2: सबसे पहले तो आप जब अभिजीत के बारे में बात कर रहे हैं, आपने पुत्र न कह के सुपुत्र कहा, तो मेरे लिए यही बहुत बड़ा आशीर्वाद है प्रभु का। और वैसे भी ये बांके बिहारी जी वृंदावन से प्रसाद स्वरूप ही हमें मिला था, क्योंकि अपने बड़े भाई से ये 10 साल छोटा है। और जैसे एक आइडियल फैमिली होती है, वो सोचते हैं ठीक है यार एक बच्चा है, उसी को ठीक से परवरिश करेंगे, उसी के सपने पूरे करेंगे, बस फैमिली कंप्लीट है। क्योंकि मेरे बड़े भाई के यहाँ एक बेटा एक बेटी है, तो हमें लगता था कि चलो बेटी घर में है तो भाई हो गए। तो समहाउ इसके बड़े भाई को किसी दोस्त ने या किसी कजन ने कुछ ऐसा कहा कि यू आर ओनली चाइल्ड और तुम्हारा कोई सगा भाई नहीं है, कोई बहन नहीं है। ही इज वेरी सेंसिटिव,
0: यस
2: उसने ये बात दिल को लगा ली और उसने अपनी माँ से कहा कि मेरा कोई भाई नहीं है। तो हमने, जैसे माँ अमूमन बच्चे को कह देती है, कह रहे नहीं कोई बात नहीं, वो तेरा भाई है, बहन है, विशु है, जयश्री, जो मेरे बड़े भाई के बच्चों के नाम है। पर उसने वो बात दिल में ऐसी लगा ली कि स्कूल में वो एक कोने में बैठ के रोता रहता था, पढ़ता नहीं था, और टीचर्स को लगा दिस इज अ केस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस
0: ओहो अच्छा
2: एंड दे कॉल्ड मी देयर। और मैंने उन्हें समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, ही इज वेरी पेम्पर्ड, और हमारे घर का माहौल तो भगवान की कृपा से बहुत अच्छा था, मेरे माता पिताजी होते थे, बहुत लाडला था बेटा। तो स्कूल इस मामले में बहुत जिम्मेवार है, मैं धन्यवाद कहूंगा स्कूल का। उन्होंने एक चाइल्ड काउंसलर को बुला लिया और उससे जब काउंसलिंग में बात निकली तो उसको ये चीज खा रही थी कि मैं अकेला हूं, मेरा कोई भाई नहीं।
0: ओके
2: देन स्कूल एंड टीचर्स दे टोल्ड अस कि इफ यू कैन अफोर्ड देन यू शुड प्लान फॉर अनदर बेबी।
0: ओके
2: और अभिजीत, व्हेन माय वाइफ इज इन फैमिली वे, तो मैं पहली बार वृंदावन जी गया था, तो वहां आकाश ने मुझे कॉल करके कहा कि पापा मेरे लिए आप वहां से क्या लाएंगे। तो मैंने कहा आप बताओ क्या चाहिए।
0: ठीक है
2: तो ही सेड के बांके बिहारी जी को ले आओ। तो ये सवाल इतना टेढ़ा था कि मैंने कहा मैं आपको थोड़ी देर में बांके बिहारी जी से पूछ के बताता हूँ। तो जब मैंने सोचा कि मैंने कभी इलॉजिकल आंसर नहीं दिया अपने बच्चे को, आज उसी का नतीजा है कि ये कहीं पहुंच रहे हैं, वो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, ये संगीत में जा रहा है। तो मैंने उन्हें फिर दोबारा फोन मिला के बोला, मैं कहा बेटा बांके बिहारी जी कह रहे हैं अगर मैं आपके साथ चल पड़ूंगा तो बाकी भक्त किसके दर्शन करेंगे। तो वो बांके बिहारी जी कह रहे हैं कि लड्डू गोपाल बन के मैं आपके घर में जल्दी आ जाऊंगा। तब अभिजीत का जन्म।
0: बहुत अच्छी बात है, ये एक अवतार है मैं तो यही कहूंगा। तो हमारी कोशिश ये हमेशा रहनी चाहिए कि हम आगे की ओर बढ़ें और उस प्रभु का धन्यवाद हमेशा के लिए करें।
2: जी, हम ये महसूस करते हैं कि ही इज बेसिकली सन ऑफ गॉड, वी आर जस्ट हिज केयर टेकर्स।
0: बहुत अच्छी बात है, और इससे ज्यादा खुशनसीब माता पिता क्या हो सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप थोड़ी सी अपनी इंट्रोडक्शन दें।
2: जी, जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम राजीव शर्मा है, मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री जगदीश चंद शर्मा, और अभिजीत की हमारी फोर फादर्स में एक रिजेम्बलेंस और भी है। मेरे दादाजी एक अध्यापक थे, वो मुनिमी, जो बेसिकली पहले टाइम के जो मुनीम हुआ करते थे, जो अगर आज का कैलकुलेटर भी आप लगाएं
0: हाँ
2: तो मुनीम उससे तेज कैलकुलेशन कर लेते थे, तो वो मुनीमी पढ़ाया करते थे। और उस टाइम पे सोशल मीडिया वगैरह नहीं होता था, उसके बावजूद भी आप ये लगाइए कि 100 किलोमीटर दूर तक उनका नाम चलता था। तो और कमाल की बात यह है, एक संयोग की बात है कि उनकी कद काठी बिल्कुल अभिजीत वैसा ही हो रहा है, उनकी हाइट मेरे पिताजी से हमसे ज्यादा थी। अब जब कभी मैं इसे देखता हूँ और जब मैं इसका नाम सुनता हूँ तो मुझे बार बार दादाजी श्री गीताराम शर्मा जी का ख्याल आता है कि शायद उन्हीं का स्वरूप दोबारा से हमारे परिवार में आ गया।
0: बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे सोचते हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे खुशी का समा और कोई भी नहीं हो सकता है। आप आज अम्बाला कैंट के पहले FM स्टेशन पर है जो कम्युनिटी रेडियो है, तो कैसा आप महसूस करते हैं, क्योंकि आज हम व्यक्तिगत रूप से आज पहली बार मिले हैं।
2: जी, बहुत अच्छा लग रहा है, और मैंने देखा है कि किस तरह से आपने ये सपना संजोया है और कितना आपने जी जान लगा के इसको यहाँ तक आप लेके आए हैं, और आपके एफर्ट्स में, आपके स्टूडियो में देखकर, और जिस तरीके से आप नए नए चेहरों को, नए लोगों को यहाँ ला के उनकी आवाज़ सब जगह पहुँचा रहे हैं, बड़ा ही सराहनीय काम है और मुझे खुद बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। और ख़ास तौर से जब अभिजीत यहाँ आया है, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा, मेरे लिए जो गर्व की बात यही है कि मुझे, मेरे सर्कल में बहुत रिजर्व्ड आदमी रहा हूँ, बहुत ज्यादा मेरा सर्कल मैंने नहीं रखा, काम में इतना व्यस्त रहा क्योंकि अकेला काम करने वाला हूँ, तो बहुत से लोग मुझे अभिजीत फादर ही जानते हैं, और यहाँ भी आज मैं अभिजीत के पिता के रूप में आया हूँ तो मुझे ज्यादा अच्छा और ज्यादा गर्व महसूस हो रहा है। क्योंकि अभी एक वाक्य हुआ कि मेरे बड़े पुराने मित्र, करीबन 15 साल पुराने मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र, मैंने उन्हें कॉल किया और कहा कि मैं अम्बाला से राजीव बोल रहा हूँ, डॉक्टर साहब आप कैसे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं पहचान नहीं पा रहा, तभी मैंने उन्हें बोला कि अभिजीत का फादर, और वो उन्होंने
0: वो
2: इमीडिएटली मुझे
0: एकदम
2: रिकग्नाइज कर लिया, तो मुझे लगा कि
0: माँ बाप के लिए,
2: परवरिश तो ठीक जा रही है।
0: परवरिश ठीक जा रही है, माँ बाप के लिए इससे खुशी का समय क्या
2: जी
0: हो सकता है। चले आगे की ओर बढ़ते हैं, और श्रोताओं मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अभिजीत के पिताजी राजीव जी भी गाते हैं, और हम अभी आप हमारे साथ बने रहिए, अभी हम आप लोगों को दोनों की आवाज में एक ड्यूएट भी सुनाएंगे। बट उससे पहले मैं अभिजीत से जानना चाहता हूँ कि अभिजीत, आपने भुज में एक कंसर्ट किया, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए।
1: अंकल, भुज का कॉन्सर्ट तो बहुत ही ज्यादा अलग था। मतलब जैसे कहीं मैं दूर जाता हूँ कॉन्सर्ट करने, तो थोड़ा सा एक फील आती है कि हाँ थोड़ा दूर है, अलग सा है सब। और वहां जाके तो एकदम ऐसे एकदम लगा कि हाँ सब अपने आप को जानने वाले हैं। मेरे वहां पे हर्षुक भाई सोनी दादू हैं, उन्हें मैंने अपना दादू बना लिया, इतना प्यार दिया उन्होंने। तो मतलब एकदम ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं कितनी बार मिल चुके हैं, रोज ही मिलते रहते हैं, तो इतना प्यार दिया। एंड जितने भी लोग थे, मतलब उनके जो चेहरे पे जो स्माइल थी, वो ऐसा पता चल रहा था कि वो सच में बहुत ज्यादा खुश है। एंड मतलब बहुत अच्छा लगा भुज का कॉन्सर्ट, तो फिर से मतलब बहुत प्यारा था।
0: कोई गाना आपको याद आ रहा है कि जो आपने वहां गाया हो और हम भी और हमारे श्रोता भी उसका कुछ हिस्सा सुन पाए?
1: जी अंकल, मैंने वहां पर वैसे तो 7 गाने गाए थे, पर उसमें से एक था जी, अभी वैसे तो दोपहर का समय है, बट फिर भी मैं गा देता हूँ।

शाम को दिल मेरा हो गया, पहले अपना हुआ करता था, अब किसी का हो गया।

0: जी हाँ, हमारे साथ है राजीव शर्मा जी और अभिजीत शर्मा जी, और साथ में मैं। सर, आप दोनों से एक अनुरोध करता हूं कि जो हमारे श्रोता है, आप दोनों की आवाज में कोई सा भी आपका मनपसंद ड्यूएट या गीत आप सुनाएं, ताकि जो सुर और ताल की जो लय है वो जिंदगी में भी बनी रहे और संगीत में भी बनी रहे।
1: जी जरूर। एक गीत है जो मैं अपने दोनों बेटों के साथ, क्योंकि मैं महसूस करता हूँ कि ये मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, और वो दोस्ती की थीम पे ये गीत है जो हम अक्सर गुनगुनाते रहते हैं, गाते रहते हैं। अभी सोशल मीडिया पे भी किसी ने डाल दिया था,
0: प्लीज
1: तो मैं वही चाहूंगा सब श्रोता सुने। और एक अपील भी करूंगा कि पिता को अपने पुत्र के साथ हमेशा मित्रता पूर्वक व्यवहार ही करना चाहिए, अगर आप उससे उसका 100% निकालना चाहते हैं। पुत्र जब कामयाब होता है ना, तो अखबार, सोशल मीडिया, रेडियो, टीवी सब उसको प्रमोट करते हैं।
0: जी
1: लेकिन अगर पुत्र कभी नाकामयाब हो जाए, तो उसके पिता को खड़ा रहना चाहिए उसके सहारे में, ताकि वो टूटे नहीं
0: जी
1: और अपने आप को फिर से समेट के दुगनी ताकत के साथ अपने श्रेय, अपने क्षेत्र में जो भी वो करना चाहता है उसे कर पाए।
0: बहुत
1: तो
0: अच्छी बात।
1: दोस्ती का ही ये गीत मैं आपको सुनाऊंगा। ये

0: ये जिंदगी हम सब की ऐसे ही चलती रहनी चाहिए, जिंदगी का कारवां ऐसे ही चलते रहना चाहिए। खुशी राजी हम आगे की ओर बढ़ें और हम भी इस प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं। आप अपनी जिंदगी में अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखें, आप अपना भी ख्याल रखें, और जैसे राजीव जी ने कहा कि आप अपने परिवार अपने बच्चों के साथ हमेशा खड़े रहिए ताकि जिंदगी में वो आगे की ओर बढ़ें। इन शब्दों के साथ ही मैं आप सबसे लेता हूं इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
1: जय हिंद। सभी श्रोताओं से हम भी इजाजत चाहेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे रेडियो वितस्ता एंड भारत जी का कि उन्होंने आज हमें इतना सम्मान इतना मान दिया, यहाँ अपनी बात रखने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद एवं अलविदा।
2: जय हिंद और जय भारत। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा भारत अंकल का एंड रेडियो वितस्ता का, एंड आप सभी को मैं बहुत प्यार देता हूँ, एंड ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए एंड ऐसे ही ब्लेसिंग्स देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।
3: आप सुन रहे थे कार्यक्रम इनसे मिलिए। आज के मेहमान थे अभिजीत शर्मा, रिकॉर्डिस्ट दीपक कुमार, निर्देशन एवं प्रस्तुतकर्ता भरत सपोरी।
4: रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।
5: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: तो रुकती नहीं, धड़कता है दिल तो थकता नहीं, बस इतनी सी देखभाल मांगता है, वरना ये किसी को कुछ कहता नहीं। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। विदस्ता की तरह जिंदगी भी बहती रहती है और उस बहाव को चलाने वाली धारा है हमारा दिल। आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता FM 90.0 MHz पर, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। और विश्व हृदय दिवस पर आज हमारी बात सिर्फ और सिर्फ आपके दिल के नाम। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी और इस कार्यक्रम में आज मेरा साथ देंगे।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। नदी में पानी साफ और बहाव खुला रहे तो किनारे हरे भरे रहते हैं, ठीक वैसे ही दिल में खून का भाव सही रहे तो पूरा शरीर खिला रहता है। हमारा दिल दिन भर में लगभग 1,00,000 बार धड़कता है बिना किसी छुट्टी के।
0: जी हां श्रोताओं, आज हम बात करेंगे दिल की और कोशिश करेंगे कि आपको वो सारी जानकारी देंगे जो आपके लिए बहुत जरूरी है और साथ में रेडियो विदस्ता की जिम्मेदारी भी। हम चाहते हैं कि अम्बाला के सभी श्रोताओं का और जितने भी हमारे श्रोता है वो स्वस्थ रहे, खास करके अपने दिल की देखरेख करें और उसका ख्याल रखें। कुछ बिंदु हम आपके सामने रखेंगे, जब हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारा दिल भी आहिस्ता आहिस्ता उसकी उम्र भी बढ़ जाती है, तो बहुत सारे बिंदु हम आपके लिए लाए हैं, तो बने रहिए हमारे साथ FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता के साथ। हमारी उम्र के बढ़ने के साथ साथ दिल की उम्र भी बढ़ती है। 25 की उम्र के बाद हर 10 साल में ऐसे बदलता है दिल। 20 से 25 की उम्र में दिल सर्वाधिक युवा होता है। इसके बाद हर 10 साल के प्रभाव दिल पर साफ दिखने लगते हैं। दिल सिर्फ धड़कता नहीं, उम्र के साथ बदलता भी है। 25 की उम्र के बाद दिल और उसकी सेहत में होने वाले बदलावों को समझिए। जानिए उन खोजों को जिन्होंने हृदय रोगों के इलाज में बड़े बदलाव किए हैं। ये सारी जानकारी जो हम आप तक ला रहे हैं, इसको तैयार किया है डॉक्टर अश्विन मेहता ने, जो डायरेक्टर हार्ट फेलियर प्रोग्राम सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में है। 30 से 40 की उम्र 5 से 10% तक कम हो सकती है ब्लड पंप करने की क्षमता। अधिकतम हार्ट रेट और व्यायाम के दौरान दिल की पंपिंग क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। दिल की ब्लड पंप करने की अधिकतम क्षमता 5 से 10% कम हो सकती है। ध्यान रखें, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर और कमर एवं हिप्स के अनुपात की जानकारी जरूर रखें। परिवार में दिल से संबंधित समस्या रही है तो जरूर पता करें।
1: 40 से 50 साल दिल की मांसपेशियों और आर्टरीज में बढ़ने लगती है शक्ति। दिल की मांसपेशियां कुछ मोटी व कम लचीली हो सकती हैं। बड़ी धमनियों की लोच घटने लगती है। रक्त को आगे ले जाने के लिए दिल को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। ध्यान रखें, इस उम्र में वजन पर नजर रखनी चाहिए क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है। खराटों को नजरअंदाज ना करें, इनका इलाज कराएं।
0: 50 से 60 साल दिल तक ऑक्सीजन पहुंचाने की कॉरोनरी आर्टरीज की क्षमता घटने लगती है। दिल की धमनियों की अंदरूनी परत की वो क्षमता जिसके जरिए वो जरूरत के अनुसार रक्त प्रवाह को नियंत्रित करती है घटने लगती है। ध्यान रखें, सप्ताह में 2 दिन स्क्वैट्स, वेट ट्रेनिंग या अन्य ऐसी ही एक्सरसाइज करें। ये मांसपेशियों का लचीलापन बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है।
1: 60 से 70 साल दिल की रिजर्व क्षमता कम हो जाती है। शरीर की मांग पर शक्ति नहीं बढ़ा पाता। जरूरत पड़ने पर कार्य क्षमता बढ़ा लेने की दिल की ताकत कम होने लगती है। तेज चलना, सीढ़ियां चढ़ना, लंबे समय तक व्यायाम करने पर जल्द थकान महसूस हो सकती है। ध्यान रखें, लेटने पर सांस फूले या पैरों टखनों में नई सूजन दिखे तो दिल की जांच कराएं। दिल की धमनियों का कैल्शियम स्कोर जरूर चेक करवाएं।
0: हमारे जीवन के 250 मिनट क्यों जरूरी है? 2024 के एक शोध के अनुसार यदि सप्ताह में 250 मिनट यानी करीब 4 घंटे मध्यम से तेज गति की शारीरिक एक्टिविटी की जाए तो दिल को सर्वाधिक फायदा होता है। ये शोध ब्रिटेन में 76,074 लोगों पर किया गया था। तो याद रखें, सप्ताह में 4 घंटे मध्यम से तेज गति की शारीरिक एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए।

0: आइए आपको बताते हैं दिल को सेहतमंद रखने का फार्मूला। ये पांच बातें बहुत काम की है। रोज कुछ मिनट तेज चलिए या दौड़िए। रोजाना 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक दिल की बीमारियों का खतरा कम कर सकती है।
1: अपने दिन भर के भोजन में आधी मात्रा कई तरह की सब्जियों और फलों की रखें। इससे आपका दिल मजबूत बनता है।
0: व्यायाम की आदत बनाएं। सप्ताह में 1 घंटे वेटलिफ्टिंग हार्ट स्ट्रोक का खतरा 40-50% तक कम कर सकती है।
1: ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर की नियमित जांच कराएं। इससे समय पर दिल से जुड़े जोखिमों का पता चलता रहेगा।
0: और आखिरी, हर स्थिति में पर्याप्त नींद लें। रोजाना 7-9 घंटे की नींद आपके दिल और दिमाग की सेहत के लिए बेहद

0: आपको बताते हैं हेल्दी हार्ट के कुछ टिप्स, दिल की सेहत के 3 संकेत और 1 जरूरी बचाव। नंबर 1, मसूड़ों की बीमारी से धमनियों में प्लाक जमने, हार्ट अटैक और स्ट्रोक तक का खतरा बढ़ जाता है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की शोध के अनुसार।
1: दूसरा, हाथों की मजबूत पकड़ भी दिल की सेहत का जबरदस्त संकेत हो सकता है। लैसेट के अनुसार यह दिल की सेहत का बीपी से सटीक प्रमाण है।
0: तीसरा, सामाजिक अलगाव और अकेलापन से हार्ट अटैक, स्ट्रोक या मौत का खतरा 30% तक बढ़ जाता है, हार्वर्ड हेल्थ द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार।
1: चौथा, फ्लू वैक्सीन लगवाने से हार्ट अटैक का खतरा 28%, मिनी स्ट्रोक का 47% और कार्डियक अरेस्ट का खतरा 85% तक कम होता है, वेब एमडी और हार्वर्ड की रिसर्च के अनुसार।

0: जब दिल कहे कि कुछ ठीक नहीं तो उसकी आवाज को टालिए नहीं। अगर सीने में दर्द या भारीपन, सांस फूलना, दर्द का कंधे या जबड़े तक जाना महसूस हो तो एक पल भी मत गंवाइए। फौरन 108 एम्बुलेंस या 112 पर कॉल कीजिए और अस्पताल पहुंचिए। सही वक्त पर पहुंचना ही जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन सकता है।
1: दिल सलामत तो हर सफर आसान, दिल की हिफाजत ही असली पहचान। तो दोस्तों, आज अपने दिल से एक वादा कीजिए और अपनों से भी करवाइए। ये संदेश अपने परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों तक जरूर पहुंचाइए।
0: जी हां श्रोताओं, इस साल के विश्व हृदय दिवस पर ये जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। ये केवल एक ही दिन के लिए नहीं है, ये पूरी जिंदगी के लिए है, ताकि हम अपने सेहत को अच्छा रखें, सुचारू रूप से अपनी जिंदगी को जिए और अपने दिल का ख्याल रखें। क्योंकि दिल हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जो जीवन भर बिना रुके रक्त पंप करता रहता है। दिल है तो सारी दुनिया है। इन्हीं शब्दों और इन्हीं भावनाओं के साथ अब हम आपसे लेते हैं आज्ञा। आप सुनते रहिए रेडियो विदस्ता FM 90.0 MHz। बहते रहिए, धड़कते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और अब मुझे भी दीजिए आज्ञा, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।

0: भारतीय फिल्म इतिहास में कुछ दशक ऐसे हुए हैं जिन्हें किन्हीं खास कलाकारों की वजह से याद किया जाता है। अगर हम 1960 के दशक की बात करें तो यह दशक राजेंद्र कुमार के कारण याद किया जाता है, जिन्हें इस दौर में अपनी सुपरहिट फिल्मों की वजह से जुबली कुमार का नाम दिया गया था। उस दौर की हर अभिनेत्री की इच्छा रहती थी कि उसे राजेंद्र कुमार के अपोजिट किरदार निभाने का मौका मिले।
1: सारे जमाने पे मौसम सुहाने पे।

राजेंद्र कुमार ने फिल्मों में एचएस रवेल के असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर अपना करियर शुरू किया था। एचएस रवेल ने ही आगे चलकर राजेंद्र को लेकर फिल्म मेरे महबूब का निर्माण किया, जो उस वक्त की

फिल्म निर्माण के गुर सीखने के दौरान ही राजेंद्र कुमार के मन में अभिनय यानी एक्टिंग की इच्छा जागृत हुई। इसके बाद एक एक्टर के तौर पर पहली बार उन्हें दिलीप कुमार के साथ फिल्म जोगन में एक छोटा सा किरदार निभाने को मिला था। यहीं से वो लगातार कामयाबी हासिल करते गए और 1956 में उन्हें फिल्म आवाज में मुख्य किरदार निभाने का मौका मिला। उसके बाद उन्होंने महबूब खान की मदर इंडिया में एक अच्छे बेटे का किरदार निभाया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा उन्हें। यह सिलसिला जारी रहा। 1959 में गूंज उठी शहनाई ने उन्हें एक सुपरस्टार का दर्जा दिलाया।

अगले ही साल उन्होंने कानून और धूल का फूल जैसी फिल्में दी, जो लगभग गूंज उठी शहनाई के समय में ही रिलीज हुई थी। वो हमेशा अपने किरदारों के साथ प्रयोग करने के इच्छुक रहते थे, मगर फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें एक अलग तरह की इमेज में बांधकर रख दिया। 60 के दशक में उन्होंने आस्क पंछी, ससुराल, हमराही, दिलीप मंदिर, आई मिलन की बेला, जिंदगी, संगम, आरजू, सूरज जैसी सुपर डुपर हिट फिल्में दी।

उनकी सफलता के चढ़ाव के इस दौर के बाद एकदम इसमें उतार आया और उनकी अमन झुक गया आसमान, पालकी, साथी और शतरंज जैसी फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप साबित हुई। इसी दौरान उन्होंने गवार, गांव हमारा शहर तुम्हारा और तांगे वाला जैसी औसत दर्जे की फिल्में की, मगर उन्हें पहले जैसी कामयाबी नहीं मिली।

70 के दशक में जब राजेश खन्ना फिल्म इंडस्ट्री में छाई हुई थी, तब राजेंद्र कुमार अभिनीत और राजकुमार कोहली की फिल्म गोरा और काला आई और सुपरहिट साबित।

सन 1980 के बाद राजेंद्र कुमार ने अपना पूरा ध्यान अपने बेटे कुमार गौरव का करियर बनाने के लिए दिया। 1981 में उन्होंने अपने बेटे को लेकर फिल्म लव स्टोरी का निर्माण किया जो सुपरहिट साबित हुई। उसके बाद राजेंद्र कुमार ने कुमार गौरव को लेकर नाम, जुरत और फूल जैसी फिल्मों का निर्माण किया, मगर कुमार गौरव अपने पिता की विरासत को आगे न ले जा पाए। इसका दुख राजेंद्र कुमार को साल-साल तक

राजेंद्र कुमार अपने पूरे जीवन में शायद ही कभी बीमार पड़े होंगे, पर 1999 में एक दर्दनाक बीमारी के चलते वो इस दुनियाई फानी को अलविदा

उनके दौर की फिल्मों के शौकीन लोगों के लिए राजेंद्र कुमार भी उतने ही बड़े ट्रेजेडी किंग थे जितने बड़े ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार को माना जाता है।

सुनते रहिए हमारी प्रसारण दिल से। अपने कारोबार को बढ़ावा देने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे प्रोग्राम्स के बारे में अपनी खूबसूरत राय से हमें नवाजते रहिए। सुनते रहिए हमारी नशरियात दिल से।

रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से सुनते रहिए रेडियो वितस्ता।

क्या आप जानते हैं मीना कुमारी का जन्म 1 अगस्त 1932 को हुआ था। मीना कुमारी का असली नाम महजबीन था और महजबीन सबसे छोटी बेटी थी खुर्शीद और मधु के बाद। इनके वालिद अली बख्श गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे। महजबीन की पैदाइश के फौरन बाद अपनी गुर्बत की वजह से अली बख्श ने अपनी इस छोटी लड़की को किसी मुस्लिम घराने के हवाले किया, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद महजबीन को वापस अपने पास ले आए। अली बख्श की फिल्मी दुनिया से पहले ही से वाबस्तगी थी। वो शायर थे, हारमोनियम बजाने के अलावा म्यूजिक टीचर भी थे। अली बख्श ने एक छोटा सा रोल अदा किया था, फिल्म थी ईद का चांद। फिल्म शाही लुटेरा के लिए संगीत भी तैयार किया था। प्रभावती देवी अली बख्श की दूसरी पत्नी थी और मीना कुमारी की दादी हेम सुंदरी ठाकुर टैगोर खानदान से ताल्लुक रखती थी। हेम सुंदरी ठाकुर की बेटी यानी अली बख्श की दूसरी पत्नी प्रभावती देवी स्टेज एक्ट्रेस के अलावा उस जमाने की बेहतरीन और उम्दा डांसर थी। अली बख्श के साथ शादी के बाद प्रभावती देवी ने इस्लाम मजहब अपना कर अपना नाम इकबाल

रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज, दिल से सुनते रहिए रेडियो वितस्ता।

अक्सर ये बातें करते हैं। तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं? है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं? ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी, कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सही हम, दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दे, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दे, क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दे, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत, अब दिल में यही बात इधर भी है

श्रोताओं, आप सुन रहे थे एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता के प्रसारण, और आज के हमारे प्रसारण आप यहीं पर संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक हर दिन रहते हैं, अलग अलग विषयों पर कार्यक्रम तैयार करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं, और हम बात करते हैं वो जो रखती हो आपसे सरोकार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मराठा। आज के लिए बस इतना ही। स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:40। तो दोस्तों, आज की इस बातचीत को अब यहीं देते हैं विराम, और वक्त आ गया है। उम्मीद है यह प्रसारण आपके मन को भाया होगा और आपकी शाम को थोड़ा और सुकून भरा बना गया होगा। दोस्तों, हम हर दिन किसी खास विषय पर बात करते हैं आपसे जाने से पहले, और आज जो हमने प्रेरणादायक विषय लिया है वो है सीखने की ललक ही जीवन को नई दिशा देती है। जीवन में सफलता पाने वाले लोग वही होते हैं जो कभी सीखना बंद नहीं करते, चाहे उम्र कितनी भी हो, चाहे अनुभव कितना भी हो। जो व्यक्ति हर दिन कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहता है, वही समय के साथ खुद को बेहतर बनाता चला जाता है। सीखने की यह ललक ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और जीवन को नई ऊर्जा से भर देती है। आज के दौर में जहां हर क्षेत्र में तेजी से बदलाव हो रहा है, वहां जो लोग नई चीजें सीखने के लिए खुले मन से तैयार रहते हैं, वे ही आगे बढ़ते हैं। चाहे वो कोई नया हुनर हो, कोई नई भाषा हो, या फिर जीवन का कोई अनुभव, हर सीख हमें और परिपक्व बनाती है। गलतियों से सीखना, दूसरों के अनुभव से सीखना और हर परिस्थिति से कुछ न कुछ ग्रहण करना ही असली बुद्धिमानी है। दोस्तों, आइए हम सब अपने भीतर सीखने की इस ललक को हमेशा जीवित रखें, क्योंकि जो सीखना बंद कर देता है वो आगे बढ़ना भी बंद कर देता है, और जो सीखता रहता है वही जीवन में हमेशा नया निखार पाता है। तो ये था आज का विषय। आशा करता हूं कि आपको ये विषय सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा, कुछ इसमें प्रेरणा भी मिली होगी। आप अपना फीडबैक जरूर हमें भेजिएगा हमारे कार्यक्रमों के बारे में और हमारे प्रसारण के बारे में। जाने से पहले आप सबके लिए चार पंक्तियां लाता हूं, और आज जो पंक्तियां आप सभी के नाम है वो ये है, जो सीखे हर पल हर मोड पर कुछ नया, जो सीखे हर पल हर मोड पर कुछ नया, वही तो पाता है जीवन में असली सिला। जो सीखे हर पल हर मोड पर कुछ नया, वही तो पाता है जीवन में असली सिला। वितस्ता भी तो हर पत्थर से कुछ सीख कर बहती है, वितस्ता तो हर पत्थर से कुछ सीख कर बहती है, यही सिखाती है ठहराव नहीं बढ़ना ही भला है, यही सिखाती है ठहराव नहीं बढ़ना ही भला। जी हाँ दोस्तों, हमें अपने जीवन में हमेशा आगे की ओर बढ़ना चाहिए। हर दिन हम कुछ नया सीखते हैं, सीखते रहना चाहिए। कभी हम परिपक्व नहीं हो पाते और आखिरी सांस तक हमें सीखना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को हासिल करेंगे, प्राप्त करेंगे। दोस्तों, जाने से पहले आपको कल के कार्यक्रमों का विवरण देता हूं, और कल यानी 30 सितंबर 2026 बुधवार, इस महीने का आखिरी दिन, हमारी सभा की शुरुआत होगी सुबह 5:58 पर वंदे मातरम से, और लाएंगे आपके लिए सुविचार, और पहली आवाज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करेंगे पंचांग के साथ। 6 बजे भक्ति संगीत, और कल बुधवार है, कल आप सुनेंगे शब्द और गुरबानी भी। 7:05 पर कार्यक्रम पहलू और गीत एपिसोड होगा 11, पेश करेंगे आरजे किरनी। 8:30 सकारात्मक कहानियों का एपिसोड 4 होगा, ममता माँ की होगा शीर्षक, पेश करेंगे नरेश शर्मा। 9:30 आपको हम आर्काइव से एक पुराना कार्यक्रम सुनाते हैं, और कार्यक्रम का नाम है बॉलीवुड की सुनहरी यादें। ये हमने तैयार किया था लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के ऊपर, तो ये आर्काइव से, अगर इसमें आवाज की कुछ कमी रही तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है। और संगीत की सभा जारी रहेगी, 6:00 भक्ति संगीत, 6:30 शाम में गजल, 7:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम नारी और सम्मान का एपिसोड 8, और शीर्षक होगा गिव एंड गेन,
पेश करेंगे आरजे किरणी और 8:30 बजे कार्यक्रम सुनहरे पल हर दिन की तरह। शीर्षक होगा देव आनंद और धीरज कुमार, पेश करेंगे रमेश मरहटा। तो ये था विवरण कल के कार्यक्रमों का। आशा करता हूं कि ये कार्यक्रम भी आपको पसंद आएंगे और आप अपना फीडबैक हमें भेजेंगे, अपनी जानकारी भेजेंगे हमारे स्टूडियो के नंबर पर जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। ये सारी जानकारी टीम रेडियो वितस्ता की कैजुअल अनाउंसर अनु ने तैयार की थी। तो श्रोताओं, यही विराम देते हैं आज के इस सफर को। उम्मीद है ये प्रसारण आपको पसंद आया होगा और आपके दिन को थोड़ा और रोशन कर गया होगा। अब अपने रेडियो दोस्त भारत सोपोरी को दीजिए इजाजत। लेता हूं आपसे अलविदा। FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद और सुनते रहिए हर दिन सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक। कल सुबह तक के लिए शुभ रात्रि। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।